FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज वीरवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। श्रोतो, इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जाँच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में

0: इंग्लैंड ने डीआर कॉन्गो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, सकारात्मक सोच पाना हर किसी के लिए सरल और संभव नहीं होता, क्योंकि जटिल परिस्थितियों में मन भी जटिलता में उलझ जाता है, परेशान होता है। ऐसी स्थिति में मन में धैर्य बना रहे, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहे, ये प्राय कम लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन जो भी ऐसा कर पाते हैं वे जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं, और ऐसा केवल प्रभु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है।

विपदाएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं, परंतु इन विपदाओं में भगवान के प्रति समर्पण का भाव हमारे साथ हो तो ये विपदाएं हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। और यदि इन विपदाओं में हम अकेले होते हैं तो यही विपदाएं हमारे लिए समस्या बन जाती हैं, हमारा जीवन तहस नहस कर देती हैं, हमारा हमसे बहुत कुछ छीन लेती हैं। भगवान का हमारे साथ होना एक ऐसा विश्वास है जो हमें कठिन पलों में जबरदस्त संबल देता है, सकारात्मकता से जोड़ता है, जीवन को आशा भरी नज़रों से देखने और इन जटिल पलों में भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है।

मनुष्य का जीवन अत्यंत रहस्यमय है। इस रहस्य को समझना आसान नहीं। अनगिनत रहस्यों को अपने में समेटे हुए है व्यक्ति का चित्त। चित्त वह है जो मन से जुड़ा दिखता है, लेकिन साथ ही हमारे अतीत के कर्मजन्य संस्कारों प्रवृत्तियों को अपने में समेटे हुए होता है। ये जीवन जो हम जी रहे हैं, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड का बस वह ऊपरी हिस्सा भर है जो दिख रहा है, परंतु इसका बहुत बड़ा अदृश्य पहलू भी है जो जल के भीतर डूबे हुए विशाल हिमखंड की तरह है। इस रहस्य से परे केवल प्रभु कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है।

स्वभाव में ही किसी व्यक्ति का प्रभाव झलकता है। व्यक्तित्व की भी अपनी भाषा होती है, जो कलम या जीवा के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। जिस प्रकार कस्तूरी की पहचान उसकी सुगंध से होती है, उसी प्रकार व्यक्तित्व की भी अपनी एक सुगंध होती है, जिसे बताया या दिखाया नहीं जा सकता, केवल उसे महसूस किया जा सकता है। इसी तरह परम शक्ति की भी कृपा है। जितना ही हम भक्ति रस को अपनाते जाएंगे, उस परम शक्ति की समीपता का एहसास हमें अपने आप ही हो जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

मानसगांव से भक्तिमय पाठ सुना और आज आपने सुना भाग 135। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शुभप्रयाग। समाचार प्रभात सुबह 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम गाने सुहाने का। सुबह 9:00 आज आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। सुबह 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग 9:30 से 10:00 तक प्रसारित किया जाएगा। गीतों का कारवां, इस कार्यक्रम का लुत्फ आप उठाएंगे सुबह 10:00। पहाड़ों के सुर, हिमाचली गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर कार्यक्रम महक पंजाब दी सुनवाया जाएगा। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मिंजरा, महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनिए दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर जिला की चिट्ठी रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से शाम 5:00 तक, और शाम 5:00 समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें 5:00 हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे। संध्याकालीन भजनों का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा मंच, और आज सुनवाए जाएंगे रोजगार समाचार। शाम 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर कार्यक्रम होगा मौजें कराई दिया। शाम 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनेगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही अभिनेता, और आज के अभिनेता हैं राजकुमार। रात 9:30 पर रंगे गजल कार्यक्रम पेश किया जाएगा। रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा। 10:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत प्रसारित किए जाएंगे। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे।

0: श्रोता, ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकायची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारतजापानयोः मध्ये विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिकसञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापकचर्चायाः आशां करोति, यया भारतजापानयोः विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्जक्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेलामार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्लीनगरे 48.1 AE राष्ट्रियराजमार्गस्य कृते 6-मार्गीयसुरङ्गस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रियराजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रियराजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुरकबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमनियन्त्रितमार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25th 2000 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25th 1000 दिनानां सवेतनवृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णं। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुकक्रीडा प्रतियोगिता

0: सनाए तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with

0: सुबह सुहानी।
1: दो जुलाई की इस प्यारी सी सुबह में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप तक मनोरंजन और जानकारियां पहुंचाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर से स्टूडियोज में पहुंच गए हैं। आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पवन शर्मा के साथ। जी श्रोताओ, हमारी सुबह सुहानी कब होती है? जी हाँ, जब हम कुछ अच्छी और सच्ची सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं आज का सुविचार। अपने विचारों को सकारात्मक, वाणी को मधुर और कर्मों को श्रेष्ठ बनाना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जी बिल्कुल, जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे जीवन की आधी से ज्यादा मुश्किलें हल हो जाती हैं। सुविचार तो आपने सुन लिया और अब गीत संगीत की झनकार आपको सुनवाते हैं और करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस पहले गीत के साथ।

दोस्तों, रेडियो पर न जाने कितनी ही दिलकश आवाज़ें हम सुनते हैं। उनके सुरीले सदाबहार गीतों को जब भी सुना जाता है, ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं ठहर सा गया है। कुछ नगमे ऐसे अंदाज में गाए जाते हैं मानो वो रूह में उतर गए हों। आज हम ऐसे ही पार्श्व गायक की बात करेंगे जिनकी आज जन्म जयंती है। जी हाँ, बिल्कुल, आज जन्म दिवस है मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज़ का, जो 1954 को कोलकाता में पैदा हुए। उन्हें अपने बेहतरीन गायन, खासकर मोहम्मद रफ़ी की शैली में गाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में हिंदी, बंगाली, उड़िया भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं। बचपन से ही संगीत के प्रति आकर्षित मोहम्मद अजीज़ ने शुरुआत में कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में गाना शुरू किया। वे 1984 में मुंबई आए। संगीतकार अनु मलिक ने उन्हें हिंदी फिल्म अंबर में पहला ब्रेक दिया। उन्हें असली पहचान अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के टाइटल गीत मर्द टांगे वाला से मिली। उनके प्रसिद्ध गानों में लाल दुपट्टा मलमल का, इतना तो याद है मुझे, अपना बना लो मुझे और छमा छमा है, और उन्हीं का गाया एक गाना व कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे, क्योंकि जन्म जयंती उनके गीत के बिना अधूरी सी है।

जी बिल्कुल, जीवन सबसे बड़ी सौगात है और इस जीवन को हमने बड़ी खुशी से जीना है। सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। खेलों का हमारे जीवन में कुछ बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि खुद खेलने का अभ्यास करने के अलावा हम में से बहुत से लोग खेल देखना भी पसंद करते हैं, फिर वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो या फिर कोई अन्य खेल। देखने के अलावा इनका आनंद हम पढ़कर भी लेते हैं। अखबारों की सुर्खियां या पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में संवाद पहुंचाना बहुत ही अनूठी कला है। तो इस तरह की कला को बिल्कुल लिखित रूप में जीवित रखते हैं हमारे पत्रकार। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और खेल पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करना है। ये न केवल खेल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि खेल और खिलाड़ियों के बीच एक सेतु का काम भी करते हैं। खेल पत्रकारिता का महत्व केवल खेलों की रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

सुबह के 7:26 और 38 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है 103.4 MHz। प्रोग्राम सुन रहे हैं सुबह सुहानी। बात करेंगे शिमला एग्रीमेंट के बारे में। शिमला एग्रीमेंट यानी शिमला समझौता 2 जुलाई को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ था, के बाद दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए किया गया था। उस समय दोनों देशों ने सबसे पहले ये तय किया कि वे अपने सभी विवादों और मतभेदों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे और इसमें किसी भी तीसरे देश का या अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे संयुक्त राष्ट्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरी बात, 1971 के युद्ध के बाद बने युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC के रूप में मान्यता दी। दोनों पक्षों ने सहमति दी कि कोई भी देश इस रेखा को एक तरफा बल प्रयोग करके नहीं बदलेगा। तीसरा, दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प लिया।

सुबह सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। बात करते हैं इतिहास में 2 जुलाई के दिन की। सन 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया। सन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में कोलकाता में गिरफ्तार किया था। सन 1940 में हिटलर ने ब्रिटेन पर हमले के आदेश देते हुए ऑपरेशन सी लॉयन की शुरुआत की। सन 1949 में वियतनाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। सन 2002 में हेपेटाइटिस सी की जांच को पूरे भारत में अनिवार्य किया गया। सन 2004 में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जकार्ता में आपसी बातचीत आज ही के दिन की थी। सन 1934 को असित भट्टाचार्य भारत के महान क्रांतिकारियों में से वो एक थे। वे आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह गए। 2 जुलाई के दिन यूसुफ मेहर अली, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक, सन 1950 को हमारे बीच नहीं रहे। सन 1948 में आलोक धानवा, प्रसिद्ध जनकवि, आज ही के दिन पैदा हुए।

जी बिल्कुल, बरसातों का मौसम शुरू हो गया है, सावन तो नहीं आया है। आषाढ़ मास में हम प्रोग्राम सुन रहे हैं सुबह सुहानी, और चलिए अब सुनते हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ करेंगे वार्ता। प्रधानमंत्री ने भारत जापान संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच व्यापक वार्ता आज। केंद्र सरकार संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू करने की तैयारी में। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज रवाना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। 1 जुलाई से लागू हुए नियमों के तहत कई वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव प्रभावी। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती, कारोबारियों को राहत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर भारत की सक्रिय भागीदारी जारी। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 24 टीमें भाग लेंगी, जिसमें से 7 नई टीमें डेब्यू कर रही हैं। मुकाबले कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 23 अगस्त को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में होगा। अब समाचार मौसम से। देश के कई राज्यों में मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग ने भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

शुभ कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अचर सिंह परमार और ज्वाला प्रसाद शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ।

शुभ्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रमों संबंधी एक सूचना सुनिए। आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम आप और हम की रिकॉर्डिंग गुरुवार यानी आज 2 जुलाई 2026 को दोपहर 1:15 से 1:45 तक की जाएगी। यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव, शिकायतें, विचार या बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग के दौरान आप हमें 01892224391 पर फ़ोन कर सकते हैं। आपकी सहभागिता हमारे कार्यक्रमों को और अधिक उपयोगी और रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो याद रखिए, आज दोपहर 1:15 से 1:45 तक आप अपने विचार रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फ़ोन करने के लिए फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 01892224391। सूचना समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे देश प्यार के गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री

0: 20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं

0: नैनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
0: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in

कुमार सानू और आशु भोंसले की युगल सरो में आपने कल की आवाज़ फिल्म का ये गीत सुना। गीत के लिए संगीत नदीम श्रवण का था। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए समीर के बोलों को। धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने, गायक कलाकार कुमार सानू, अलका याग्निक। फिल्म है दिलवाले।

0: खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सुबह के 8:42 आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम सुन रहे हैं गाने सुहाने।

गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आप लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और बाबला को। चांदनी फिल्म का ये गीत है, संगीत शिव हरी का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। पानी को बर्फ बदलने में समय लगता है, सूरज को निकलने में भी समय लगता है। किस्मत को यूं नहीं बदला जा सकता, उसमें मेहनत का रंग लगता है। सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक नए अंदाज में हम आज का गीतांजलि कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं। कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो कुछ ऐसा ही परिवर्तन आज के गीतांजलि प्रोग्राम में हमने किया है। जी हाँ, आज का गीतांजलि कार्यक्रम लाइव फोन इन रहने वाला है, जिसमें हम आपसे बातचीत भी करेंगे और फिल्मी गीतों का साथ भी रहेगा।

नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 01892224391। हेलो जी, पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, ये गाना हम सुनते हैं और उसके बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। विषय वही है, क्या आप भाग्य में विश्वास रखते हैं?

0: हेलो
1: जी, नमस्कार जी। राम राम।
0: राम राम जी, नाम बताएं अपना, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं
1: चूड़ीलाल पंचरुखी से।
0: जी। और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विषय तो आपने सुना ही होगा कि आज हम जिस विषय पर प्रोग्राम में बात कर रहे हैं।
1: भाग्या है, भाग्या ही है ना आज का विषय।
0: जी, भाग्य। क्या भाग्य में विश्वास रखते हैं?
1: भाग्य में विश्वास रखना पड़ता है मेहनत जी, लेकिन भाग्य भी बनाना पड़ता है, बैठ के भाग्य नहीं बनता है।
0: सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों में रंग भरने के लिए और भाग्य को आपका साथ दे, तो उसके लिए मेहनत का रंग तो जरूर भरना ही पड़ता है जी।
1: भाग्य को ऐसा नहीं बनेगा, भाग्य को बनाना पड़ता है, बदलना पड़ता है, रंग भरना पड़ता है, जैसे आपने कहा है। और देखा होगा, और किस्मत का बड़ा भाग पहले कुछ नहीं मिलता है।
0: जी, तो कभी कोई ऐसे वाक्य आपके साथ हुआ कि आपने मेहनत की हो, या तो फिर आपका भाग्य ने साथ नहीं दिया हो, या फिर आपने कम मेहनत की हो तो आपको बहुत कुछ मिल गया हो?
1: भाग्य बनाने के लिए मेहनत की है और उसका फल मिला है
0: जी, तो आप करते क्या हैं?
1: जी। रिटायरमेंट हूँ, 77 मेरी उम्र है और मैं रिटायर्ड सूबेदार हूँ।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए कितना एक्सपीरियंस है आपको, और क्या कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में? और
1: विषय में यही कहना चाहता हूँ कि जो आजकल के नौजवान है ऐसे बेरोजगार है, तो वो घर में ना बैठे कुछ ना कुछ करे। अगर आपको अपना कुछ बनना है तो
0: जी, कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कभी कहते हैं ना कि मेहनत में अगर असफलता मिल भी जाए तो उसे हमें सफलता की पहली सीढ़ी के रूप में लेना चाहिए। और बहुत सारे युवा आजकल ऐसे हैं कि अगर उन्हें असफलता मिलती है तो उनका भटकाव हो जा रहा है, वो नशा वगैरह में बढ़ जा
1: यही
0: रहे
1: मैं
0: हैं। जी
1: कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आवारा गर्दी बहुत चली गया, बेरोजगारी बहुत चली गया, नशा करते
0: जी
1: हैं, चिट्टा ले पकड़े। हर एक गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया हुआ है, इसीलिए चलाया है कि वो अपना किस्मत बदले, भाग्य बदले, मेहनत करें और अब मेहनत का खाएं।
0: जी मेहनत करनी ही पड़ती है, मेहनत का रंग भरना पड़ता है, और कई बार भाग्य का भी हमें साथ बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन भाग्य के भरोसे हमें कभी नहीं रहना चाहिए। चलिए, आपसे बात बहुत अच्छी हुई है और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद अगले लिसनर से बात होगी। शुक्रिया
1: गाना सुना दो, कोई पुराना गाना सुना दो, फिर नए नए गाना बता दो।
0: जी, शुक्रिया।

जी श्रोताओ, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर, और नंबर है 01892224391, 01892224391। एक ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। और बात कर रहे हैं, क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं?

0: लाइफ ऑन इन प्रोग्राम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओ, फेसबुक पर भी बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं इस प्रोग्राम से संबंधित। और इसमें दो श्रोता हैं जिन्होंने सेम ही गाने के लिए फरमाइश की है। और गाना है पहली तारीख फिल्म का गाना, और दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। बता दें कि आज तारीख तो दो है, लेकिन गाना हम उनको बिल्कुल सुनवाएंगे। और ये फरमाइश करने वाले हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। इसी के साथ इस गीत की फरमाइश हमें की है, उन्होंने लिखा है, प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार, जय जौहर। और जय जौहर हम उन्हें कह रहे हैं। गाना उन्होंने यही लिखा है, बिल्कुल उन्होंने गायक भी बताए हैं, किशोर कुमार जी का गाया गाना है, संगीतकार सुधीर फड़के जी हैं, कोका विलाई से हैं ये, उत्तम सिंह झंगेल, मॉरिस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष झंगेल, नंदिनी झंगेल, धमदा ग्राम सुखरी कला, अमित झंगेल, शगुन झंगेल, आरुषि, आशिका, आदित्य झंगेल और अंजलि झंगेल जी ने इस गीत की फरमाइश की है। तो चलिए पहले ये गाना ही आपको सुनवाते हैं। और कॉलर तो लगातार हमें मिल रहे हैं, लेकिन पहले फेसबुक की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।
1: दिन है सुहाना, आज

पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना। आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

बड़े ही शरीफ है पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: का खजाना आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज पहली तारीख है।
1: 01892224391 ये मेरे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो जी, इन्होंने हमारा साथ बिल्कुल छोड़ दिया है और हमने इनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है और हम उम्मीद करेंगे कि ये हमें जल्दी से कॉल करेंगे। 01892224391 ये मेरे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन गीतांजलि। हेलो हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: जी
1: जरा ऊंचे स्वर में बोलिए और अपनी जगह का नाम भी बताएं।
2: जी जी कुशीनगर से बोल रहे हैं, कुशीनगर
1: जी। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। बताएं कि आज जो विषय हमने रखा है उसके बारे में आपने सुना।
2: नहीं,
1: जी विषय है क्या आप भाग्य में विश्वास रखते हैं?
2: क्या
1: भाग्य में विश्वास रखते हैं आप?
2: बिल्कुल बिल्कुल जी।
1: तो भाग्य के सहारे आपको क्या क्या मिला है?
2: बहुत सा जीवन में मुझे बहुत कुछ मिला है। जी मतलब
1: जैसे
2: मतलब कामयाबियां मौत मिली है।
1: देखिए कई बार हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ जाते हैं और बाद में हम कहते हैं कि ये तो हमारा भाग्य था। कई बार बच्चों को स्कूल में बहुत अच्छे अध्यापक मिल जाते हैं, वो अपने विषय में बहुत पारंगत हो जाते हैं, मैथ का टीचर अच्छा मिल जाता है, किसी भी विषय की बात अगर हम करें। उसी तरह हमारे जीवन में जैसे हम बड़े होते हैं तो हम कहीं नौकरी चाकरी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद हमें ऐसे लगता है कि नहीं, हमें इनसे मिलना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ बातचीत करने के बाद हमें सकारात्मक सोच हमारी हो जाती है, हमारे अंदर जो है पॉजिटिविटी भर जाती है। तो कुछ ऐसे ही वाक्य हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं।
2: स्टूडेंट जो मैं हूँ मतलब पढ़ाई लिखाई मान लीजिए अब छूट गया है, बच्चे लोग मतलब हैं।
1: जी तो हेलो जी, ये बहुत दूर से हमें फ़ोन कर रहे हैं और थोड़ी सी सिग्नल की समस्या लग रही है। कोई बात नहीं, हम उम्मीद करेंगे कि श्रोता सिग्नल में रहकर हमें कॉल मिलाएं। 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। और एक और श्रोता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हेलो
3: हेलो
1: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
3: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछौड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
1: उज्जैन से, तो आप महाकाल की नगरी से बोल रहे हैं। बताएं कि भाग्य में आप विश्वास रखते हैं?

0: जी बिल्कुल भाग्य में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं ना कि नसीब में होता है तो चल के भी आता है और नहीं होता है ना तो आकर भी चला जाता है।
1: जी, जो आपका हाथ का निवाला है वो भी आपके हाथ से छूट जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हमें भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए। बताएं कुछ
0: जी
1: अपने उज्जैन
0: बिल्कुल,
1: के बारे में, कुछ अपने आसपास के इलाके के बारे में।
0: जी बिल्कुल, हमारे आसपास का इलाका मैदानी इलाका है और खेती किसानी का काम करते हैं लोग, और अभी बरसात भी हो गई तो सोयाबीन की फसल लगा रखी है।
1: जी, तो सोयाबीन से तो बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं, सोयाबीन तेल बनता है, सोया न्यूट्रीज जो हैं बनती हैं, और जी तो काफ़ी पैमाने पर लगाया जाता है कि थोड़ी बहुत अपने ज़रूरत के लिए लगाया जाता है
0: नहीं
1: व्यापारिक रूप
0: बिल्कुल
1: से।
0: पूरे, हाँ जी बिल्कुल पूरे इलाके में लगाया जाता है, हमारे जितने भी मतलब खेत है ना,
1: जी,
0: सभी खेत में किसान लगाते हैं और उसका मंडी में बेचते भी हैं ले जाकर, और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं।
1: जी मंडी में ले जाकर बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं, और ये सब प्रकृति का और ये प्रभु का और ये सब भाग्य की बदौलत ही आप सबको ये
0: जी
1: चीज़ें
0: बिल्कुल,
1: प्राप्त हो
0: और ऐसा
1: रही
0: आपको
1: हैं।
0: बताऊँ, भाग्य के सहारे भी नहीं रहना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए। जी
1: आजकल देखिए
0: हाँ
1: मौसम, पिछले साल जो है काफ़ी बरसात हुई, और हम ये नहीं कह सकते कि कुछ अगले पल में क्या होगा। आपके
0: जी
1: खेतों
0: हाँ
1: की जो पैदावार है वो बारिश पर भी निर्भर करती है, अगर बारिश अच्छी ना हो तब भी मुश्किल है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी मुश्किल हो जाता है। तो सब ये भाग्य की बातें हैं और भाग्य का मिला जुला रूप ये होता है। चलिए आपको गाना सुनवा रहे हैं, और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और इस कार्यक्रम में मेरा पहला कॉल लगा है।
1: जी, और हम सभी
0: जी
1: नए श्रोताओं का स्वागत करना चाहते हैं ताकि
0: जी
1: हमारे साथ हमारे श्रोता संघ जो हमारा परिवार है वो आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और इसी तरह हम अपने श्रोताओं के साथ लगातार बातें करते रहें। धन्यवाद।
0: जी थैंक यू।

लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओ, इस कार्यक्रम का शेष भाग लेकर लौटेंगे 9:30 पर, क्योंकि 9:18 हो चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। और आप मिलाते रहिए हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर 01892224391, क्योंकि हम लौटेंगे बिल्कुल प्रादेशिक समाचारों के बाद।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार की सब कमेटी ने सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां करने की सिफारिश की। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपये घटाई। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन ने बदली धर्मशाला की तस्वीर। मॉनसून के दौरान शिमला में 3 महीने तैनात रहेगी एनडीआरएफ की टीम। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य के 158 सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है। कैबिनेट सब कमेटी की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई बैठक में ये सिफारिशें की गई। अब इस सिफारिश पर मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेंगे। इन स्कूलों में तैनाती के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई चयन परीक्षा में 6,084 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि इन स्कूलों में लगभग 6,200 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। प्रदेश सरकार द्वारा खोले जा रहे इन सीबीएसई

0: बद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण अभी तक लगभग 500 विद्यार्थी इन स्कूलों को छोड़ चुके हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183 रुपये 50 पैसे की कमी की है। तेल कंपनियों ने विमान ईंधन की दरों में भी 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। जानकारी के अनुसार अब 19 किलो वाला वाणिज्यिक सिलेंडर 2,930 रुपये में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बीते 4 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना ने पर्यटन नगरी धर्मशाला को नया रंग रूप दे दिया है। बीते 5 सालों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धर्मशाला में जहां लोगों को मेट्रो शहरों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई है, वहीं धर्मशाला शहर विकास के मॉडल के रूप में भी उभरा है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना ने 5 वर्षों में धर्मशाला की तस्वीर बदल दी है। शहर में प्रस्तावित 80 विकास परियोजनाओं में अधिकांश पूरी हो चुकी हैं, जबकि स्मार्ट रोड, क्लब हाउस के साथ फुटबॉल ग्राउंड और आईएसबीटी के पास पार्किंग जैसी कुछ परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के सीईओ जफर इकबाल ने बताया कि धर्मशाला को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में पहचान मिली है। नड्डी और गमरू में रूट जोन ट्रीटमेंट प्लांट तथा 15 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और ई मोबिलिटी को भी बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए इन कार्यों ने धर्मशाला को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और नागरिक सुविधाओं से समृद्ध शहर के रूप में स्थापित किया है। आने वाले समय में शेष परियोजनाओं के पूरा होने के साथ धर्मशाला स्मार्ट और सतत शहरी विकास का एक और मजबूत उदाहरण बनकर उभरेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: शिमला जिले में मॉनसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की एक टीम को शिमला में तैनात किया है। ये टीम 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने की अवधि के लिए शिमला के ढली में तैनात रहेगी। इस टीम में 30 सदस्य शामिल है। शिमला की अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा ने कहा कि जिला प्रशासन मॉनसून के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता भाजपा के संपर्क में है और पार्टी में शामिल होने के इच्छुक है। केशव चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और पंचायत चुनाव के नतीजे इसका स्पष्ट प्रमाण है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने कहा है कि 1 महीने में 8 से 10 हजार भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। केशव चौहान ने कहा कि भाजपा को छोड़ कांग्रेस अपनी चिंता करे, क्योंकि राज्य की जनता कांग्रेस के झूठ से तंग आ चुकी है।
2: मेरा कांग्रेस के महासचिव से आग्रह है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ दें। अभी प्रदेश भर में पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय में उनकी हार हुई है, उसको छुपाने का, उसको दबाने के लिए ये इस प्रकार के प्रोपोगंडा कर रही है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा हुई। इस दौरान मंडी जिला के ओट के पास पहाड़ से गिरी एक चट्टान की चपेट में आने से एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। प्रदेश में मानसून से जुड़ी घटनाओं में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज चंबा जिले के पांगी और लाहौल घाटी में 2 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं भी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, और सिरमौर जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। इधर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जिले में ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ आने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए लोगों को सचेत रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। इधर लोक निर्माण विभाग ने मानसून को देखते हुए विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। चंबा जिला उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर प्रमोद शाह ने जिले के सभी बागवानों से सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की।

0: की है। उन्होंने कहा है कि बदलते मौसम के कारण ओलावृष्टि, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बागवानी को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए मौसम आधारित फसल बीमा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। डॉक्टर प्रमोद शाह ने कहा कि बागवान इस योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यदि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है तो बीमित बागवान को योजना के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है।
1: हम लोगों की तो यही सलाह देती है मैं फार्मर को कि अपना जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको टाइमली उसको आप जरूर अवेल करें, क्योंकि मौसम का कभी भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अनुमान कब इसका बदलाव आ जाए।
0: हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत बलोह की सरपंच लता देवी का इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित महिला राजनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। इस राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यक्रम के तहत लता देवी को भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का मौका मिला। लता देवी ने कहा कि एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सरपंच के रूप में लोकतंत्र के सर्वोच्च विधायी मंच को निकट से देखने और उसकी कार्यप्रणाली को समझने का ये अवसर उनके सार्वजनिक जीवन का अत्यंत प्रेरणादायी और गौरवपूर्ण क्षण रहा। प्रदेशव्यापी एंटी चिट्टा अभियान के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स और जिला पुलिस व औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में दवा विक्रेता, मेडिकल की दुकानें, औषधि थोक विक्रेता और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का सघन निरीक्षण किया गया। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, लाहौल चंबा में तीन जगह बादल फटे, सड़कें ध्वस्त, मंडी में पत्थर लगने से महिला की मौत। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अंततः पूरे प्रदेश में पहुंचा मानसून, लाहौल स्पीति के जामलना में, चंबा के साहों में बादल फटने से नुकसान। पंजाब केसरी लिखता है, सिरमौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा में आज भारी वर्षा की चेतावनी। शिमला में 50 लाख के जेवर चोरी मामले में पंजाब से दो महिलाएं गिरफ्तार, 40 तोला सोना भी बरामद। शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, शिमला पुलिस को सीसीटीवी और तकनीकी जांच से मिला आरोपियों का सुराग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की सब कमेटी ने सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां कराने की सिफारिश की। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपये घटाई। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन ने बदली धर्मशाला की तस्वीर। मॉनसून के दौरान शिमला में तीन महीने तैनात रहेगी एनडीआरएफ की टीम और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, आज राज्य के चार जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
5: एक सौ 3.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग और अगले कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
6: नमस्कार मैडम।
5: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
6: अनुपम बोल रहा हूँ, कांगड़ा हिमाचल से।
5: जी स्वागत आपका कार्यक्रम में, और बताएं क्या भाग्य में विश्वास रखते हैं?
6: बिल्कुल मैडम, भाग्य में विश्वास रखते हैं, पर भाग्य उदय तभी होगा जब हम परिश्रम जो है वो करेंगे।
5: जी, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आपको लगता है कि भाग्य का बहुत साथ है आपके साथ?
6: भाग्य का साथ तो मैंने जैसे पहले ही बोला, भाग्य का उदय जो है वो परिश्रम के साथ ही होगा।
5: जी,
6: भाग्य जो है वो एक कार की तरह है, या एक बस की तरह है, या एक वाहन की तरह है। जब तक आप उसमें परिश्रम का तेल नहीं डालेंगे, वो खड़ी खड़ी जो है वो
5: जी
6: ऊर्जा नहीं दे पाएगी,
5: और ऊर्जा नहीं दे पाएगी। और वो बस जब तक वो खड़ी रहेगी तो उसमें जंग लग जाएगा, उस बस को चलाना पड़ेगा। जी।

0: कराना पड़ेगा परिश्रम से। मैं खुद जो है वो एक सहायक आचार्य हूँ, राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी में हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
0: हाँ जी, हमारे जो है वो माँ बाप से हमें यही शिक्षा मिली है कि बेटे मेहनत करोगे तभी आगे फल मिलेगा, भाग्य तभी उदय होगा।
1: जी,
0: तो हम तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट सेट कमीशन, ये सारे पेपर हमने परिश्रम के सहारे ही जो है वो अपना भाग्य लिख।
1: जी, और परिश्रम के सहारे और जो माता पिता का आशीर्वाद है वो भी भाग्य से ही मिलता है। और जब आप जैसे गुणी विद्वान लोग जो हैं चार लोगों के बीच में बैठते हैं, जब वो अपने ज्ञान का बंटवारा करते हैं, तो सामने वाले को भी लगता है कि ये इंसान हमें भाग्य से ही मिला है। आपने जब भी आप प्रिंसिपल रहे होंगे या फिर अध्यापक रहे होंगे, तो आपने जिन जिन लोगों को गाइड किया होगा वो भी उम्मीद करते होंगे कि ये सोचते होंगे कि उन्होंने हमें आपका भाग्य से साथ मिला, क्योंकि हर किसी का मिलना जो है भाग्य से ही होता है।
0: हम अपने विद्यार्थियों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा आप जब मेहनत करेंगे तभी आपका भाग्य उदय होगा, आप अच्छी पोस्ट पे पहुंचेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप देश का भविष्य बनेंगे।
1: चलिए, आपने प्रोग्राम में बहुत अच्छी बात हमारे संग साझा की। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनते रहिए। नमस्कार जी। श्रोताओ, लाइव फोन इन गीतांजलि कार्यक्रम आप आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से सुन रहे हैं, और कुछ मैसेजेस हम फेसबुक से भी ले रहे हैं जो आकाशवाणी धर्मशाला का पेज है। ये मैसेज हमें करने वाले हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, और गाने की फरमाइश इन्होंने की है धरती फिल्म से, खुदा भी आसमां से जब। तो चलिए इन्हीं की पसंद का गाना हम सुनवाते हैं और अगले कॉलर से बात हम उसके तुरंत बाद करेंगे।

0: हेलो।
1: हाँ जी
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी स्वागत है, और बताएं छत्तीसगढ़ में क्या मौसम है, कैसे हाल है, मौसम के क्या मिजाज है?
1: यही अभी तो बारिश का कोई आसार नहीं लग रहा है, धूप खिला हुआ है।
0: और बारिश अभी तक एक बार भी नहीं हुई है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है
0: जी। मानसून तो सक्रिय हो गया है। चलिए मेघराज जी झमाझम आपके इधर भी बरसेंगे और गर्मी से राहत मिलेगी। और बताएं भाग्य में विश्वास रखते हैं?
1: कभी कभी भाग्य का साथ भी जरूरी होता है। मतलब कह सकते हैं मेहनत तो अपने हाथ में होता है
0: जी,
1: लेकिन भाग्य ऐसा चीज है कि कई बार मेहनत और भाग्य का तड़का एक साथ लगे तो ज्यादा सफलता मिलता है
0: जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम कोई एग्जाम देने के लिए तैयारी करते हैं, हमने बहुत मेहनत की होती है दिन रात, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो घूम फिर रहे होते हैं और परीक्षा में उन्होंने इतनी तैयारी नहीं की होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छे अंकों से सफल हो जाते हैं या फिर कहीं उनकी किसी नौकरी में सिलेक्शन हो जाती है, तो उस समय ऐसा लगता है कि भाग्य ने शायद हमारा साथ नहीं दिया, हमने तो मेहनत बहुत की थी लेकिन भाग्य कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है ना?
1: जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात हमने की, और प्रोग्राम का हिस्सा यूं ही बने रहिएगा, और प्रोग्राम में कॉल किया बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। शुक्रिया
0: जी। लाइव फोन इन गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और श्रोताओं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी आप हमारे संग जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपने घर में रेडियोज नहीं रखे हैं तो वो इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करना होगा, और उसके तुरंत बाद लाइव रेडियो लाइव टीवी का वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपने लाइव रेडियो में जाना है और पूरे भारत वर्ष के रेडियो चैनल जो हैं आपके सामने खुल जाएंगे, जिसमें से आपने हमारा फेवरेट आकाशवाणी धर्मशाला सिलेक्ट करना है और आपने हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना है जी। और फेसबुक मैसेंजर्स से हम कुछ मैसेजेस ले रहे हैं। ये मोहम्मद फरमान जी हमें लिख रहे हैं, ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, कह रहे हैं आरजे जी किसी भी गीत को प्रोग्राम में शामिल कर दें, इनके साथ साथ गाना सुनना चाहते हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, और साथ में उन्होंने धन्यवाद भी लिखा है, और धन्यवाद हम उनका भी कर रहे हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया है। इसी के साथ जगदीश धाकड़ जी हमें लिख रहे हैं प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम, और हमारा प्रणाम भी उन तक पहुँच चुका है। किसी भी गीत को शामिल करें, फरमाइश करता है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोड जिला रतलाम MP से, मध्य प्रदेश से ये लिख रहे हैं जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। और इसी के साथ मीका विर्क जी हैं, वो भी किसी भी गीत की फरमाइश कर रहे हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, इनके साथ साथ गाना सुनना चाहते हैं हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जातेक विर्क और मीका विर्क। तो चलिए इन सभी श्रोताओं के लिए हम एक गाना अपनी पसंद का सुनवा रहे हैं, और श्रोताओं आप यूं ही मिलाते रहें हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर, क्योंकि लाइव फोन इन गीतांजलि आज हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम जी, मैं रतनचंद बात कर रहा हूँ
0: जी। रतनचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और बताएं, क्या आप भी भाग्य में विश्वास रखते हैं?
1: मैं विश्वास रखता हूँ जी, जैसे हमारे शास्त्र बोलते हैं कि युद्ध में ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथा, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रवेशन्ति मृगा।
0: बहुत बढ़िया जी।
1: जो आदमी युद्ध करता है उसके सारे काम पूरे होते हैं। यदि युद्ध नहीं होता, भाग्य के सारे सिंह महाराज सोए रहते जंगल में कि मेरे मुंह में आके हिरण अपने आप प्रवेश करेंगे, तो ऐसा होता नहीं है।
0: सिंह वो ये सोचे कि वो जंगल का राजा है और अपने आप ही उसका पेट भर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है जी।
1: उसको तो भटकना पड़ता है, सिंह गर्जना करती पड़ती है, पूरा पूरा दिन भूखा रह के वो शिकार की ताक में बैठा रहता, तब जाके कहीं शिकार मिलता है।
0: जी जी, बिल्कुल बढ़िया जी।
1: तो भाग्य है क्या? भाग्य हमारे कर्म, और उन कर्मों को करने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, कितनी युद्धशीलता से हमने उस काम को किया, वही भाग्य है
0: जी।
1: क्योंकि भाग्य कोई अलग चीज नहीं है। तब तो जो शेर वाली बात हो गई, तब तो हमें सब कुछ भाग्य के भरोसे मिल जाता। भाग्य का रोल मैं 1% मानता हूँ, ये मेरा अपने निजी विचार है, और बाकी हमारे कर्म जो हैं वो ही हमारे भाग्य का फैसला करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात, हमारे जो कर्म हैं वो हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं, और अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य से भी हम कोई आशा नहीं कर सकते, कोई उम्मीद नहीं कर सकते।
1: जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की, और बहुत संस्कृत में आपने जो एक वचन बोला बहुत अच्छा था, और इसी से काफ़ी कुछ सारे श्रोताओं को हमें हमारे मिल गया होगा, और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, इसका हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, धन्यवाद मैडम
0: जी। श्रोताओं, आप भी कॉल कर सकते हैं 01892224391, ये मेरे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। और जैसे कि हम फेसबुक मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, तो एक बी कमल जी हैं, उन्होंने हमें कॉल मैसेज किया है, लिखते हैं, आदरणीय जी किसी भी गीत को शामिल करें, और मजनू टिल्ला से वो बोल रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, इनको गाना हम बिल्कुल सुनवाएंगे। और इसी के साथ अनिल वर्मा जी प्यार भरा नमस्कार हमें लिख रहे हैं, फिल्म हीर रांझा का गाना ये सुनना चाहते हैं, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, लता मंगेशकर और अनवर जी की आवाज़ है, सदर बाजार कुरवली से ये लिख रहे हैं, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। तो चलिए गाना यही सुनवाते हैं हीर रांझा का, और प्रोग्राम से जुड़े रहिए, प्रोग्राम में कॉल करते रहिए, नंबर वही है जाना पहचाना 01892224391।

0: 9:48 मिनट और 35 सेकंड आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। हेलो नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नाम बताएं अपना।
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा हूँ
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से
0: जी। आज हमारे साथ बहुत दूर दूर के लोग जुड़ रहे हैं। बताएं आप भाग्य में विश्वास रखते हैं?
1: मैडम कुछ हद तक रखते हैं कुछ हद तक नहीं रखते।
0: तो कब रखते हैं और कब नहीं रखते हैं भाग्य में विश्वास?
1: मैडम भाग्य में विश्वास जब रखते हैं जब हम अपनी मेहनत से जिस चीज को पाना चाहते हैं अब वो नहीं मिल पाती
0: उस टाइम विश्वास रखते हैं।
1: जी जी फिर ये सोचते हैं कि अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा।
0: मतलब भाग्य के भरोसे छोड़
1: करने के बाद अगर सफलता नहीं मिल पाती तो फिर हम उसमें विश्वास करते हैं।
0: जी जी।
1: अगर आप कहो कि खाना सामने रखा और अगर हमारा भाग्य में होगा तो ये पेट में चला जाएगा तो ये इस बात पे हम विश्वास नहीं करते।
0: जी बिल्कुल। उसे अपने हाथ से तोड़कर मुंह में डालना पड़ेगा उसे चबाना पड़ेगा और फिर हमारे शरीर का बाकी काम जो है वो पचाने का काम वो शरीर जो है हमारा लिवर है हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो करेगा है ना।
1: जी जी। भाग्य ने उतना कर दिया है आपके लिए व्यवस्था कर दिया है लेकिन उसको आपको उसका कार्य करने में आपको तो आपको खुद को मतलब कहना चाहिए मदद करना पड़ेगा।
0: जी बहुत सारे लोगों को अपने भाग्य से हमेशा शिकायत रहती है हमें ये नहीं मिला हमें वो नहीं मिला लेकिन मैं समझती हूँ हम लोग ये समझते हैं कि हमें जो मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि संतुष्टि नहीं है इसलिए हम जिंदगी में हम लोग परेशान रहते हैं। जो आज है हम उसमें नहीं जीकर अपने कल के लिए आज परेशान होते हैं और उसके चक्कर में हम अपना आज भी खराब कर लेते हैं ऐसा मानते हैं।
1: मैडम हमारी आवश्यकताएं जो है ना वो बहुत ज्यादा है जरूरत से ज्यादा।
0: जी
1: तो अगर आप जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज चाहेंगे तो उसमें तो आपको परेशान होना ही पड़ेगा।
0: जी
1: क्योंकि वो चीजें पूरी होना संभव नहीं है।
0: जी
1: तो जितना मिल रहा है आपको उतना में तो कम से कम कहना चाहिए आपको संतुष्ट करना पड़ेगा।
0: देखिए एक सुदामा जी थे वो उनके पास कुछ नहीं था लेकिन उनके पास कृष्ण की भक्ति थी उसी में संतुष्ट थे और इतने खुश रहते थे भजन करते थे बेशक उन्हें भोजन नहीं मिलता था लेकिन कुछ राजा महाराजा भी हुआ करते हैं नाम नहीं लेंगे उनके पास जितना था उससे भी ज़्यादा अपने राज्य के विस्तार के लिए वो दौड़ते रहे भागते रहे परेशान होते रहे और अंत में जो है वो मृत्यु को भी प्राप्त हुए। तो वही कहते हैं ना कि संतोष परमम सुखम है ना।
1: जी
0: जी। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में आपने कॉल किया बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जी श्रोताओ लाइव फोन इन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 9:51 और 20 सेकंड हो चुके हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0182224391 ही हमारे स्टूडियोज़ का नंबर। और अब फेसबुक मैसेजेस पर फिर से आते हैं तो ये मैसेज हमें पी भी खुल

नमस्ते जी कर रहे हैं। प्रिय प्रस्तुतकर्ता जी नमस्कार, नमस्कार भी हम उन्हें कर रहे हैं। और रोटी फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, किशोर कुमार की आवाज़ है। बीट शहर महाराष्ट्र से ये लिख रहे हैं पोपटराव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेश कुलथे और रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता उन्होंने लिखा है। इसी के साथ चंद्रकांत साहू जी ने भी हमें मैसेज किया है, नमस्कार के साथ उन्होंने शुरुआत की है और लिख रहे हैं कि कार्यक्रम में हमें भी शामिल करें। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतारी छत्तीसगढ़ से वो लिख रहे हैं। चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू और शिखा शेफाली। और इसी के साथ एक मैसेज हम और ले लेते हैं, ये है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम सुरलकर। धनवान फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। लेकिन पहले हम गाना सुनवाएंगे पीवी कुलथे जी को, जो सुनना चाहते थे रोटी फिल्म का गाना। प्रोग्राम में आपने कॉल करना है, नंबर वही है 01892224391।

शिशु तो कभी कभार हम सब के साथ ऐसा होता है कि जब हम मेहनत करके बिल्कुल हार जाते हैं तो अचानक हमें वो सब मिलने लगता है जिसके लिए हमने बहुत सपने संजोए हुए।

हैं, बहुत उम्मीद लगा कर रखी होती है। तो ये उम्मीद हमें किसी एग्ज़ाम के क्लियर होने से रिलेटेड हो सकती है, हमारा कोई काम जो नहीं बन रहा उससे संबंधित हो सकता है, या फिर कुछ और। जब ऐसी स्थिति आती है तो लगता है कि हाँ, कोई परम शक्ति है जो मदद का हाथ बढ़ा रही है, जो कहती है हमें निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बहुत सारे मैसेजेस हमें फेसबुक पर आए, जितने हम इसमें शामिल कर पाए वो हमने ले लिए हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज के कार्यक्रम में हमें बताई। चलते चलते आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के लिए तकनीकी सहयोग रहा विपिन कुमार का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दे इजाज़त और एक गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ।

हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गीतों का कारवां। गीतों का कारवां कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले रागों पर आधारित मधुर फिल्मी गीत।

बरखा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना। भारतीय सिनेमा में बरसात सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे खूबसूरत जरिया रही है। संगीतकारों ने रिमझिम फुहारों, कड़कती बिजली और मिट्टी की सौंधी खुशबू को संगीत के साथ सुरों में पिरोया और वे गीत अमर हो गए। परख फिल्म का ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज़ है, सलिल चौधरी का संगीत। ये गीत राग खामज पर आधारित है। सलिल दा ने इसमें सरोद और गिटार का जो इस्तेमाल किया है उससे ऐसा लगता है कि सच में पानी की बूंदें पत्तों पर गिर रही हैं।

परख फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी श्रोता सुन रहे थे। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

नमक हलाल फिल्म का ये गीत भप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया हुआ है। भप्पी दा ने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों के साथ ढोलकी और चुलबुली बीट्स का इस्तेमाल कर बरसात को बेहद मस्ती भरे अंदाज में ढाला है।

0: मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
3: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

गीतों का कार्रवाई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शास्त्रीय रागों का जादू फिल्मों में बिखेरा गया है और जब भी गंभीर, गहरी और विरह की भावना को दिखाना हो तो संगीतकारों ने राग मेघ, राग मल्हार या मियां मल्हार का सहारा लिया। इन रागों की बनावट ही ऐसी है जो मन में बादलों के घिरने का एहसास करा देती है।

फिल्म का ये गीत आरडी बर्मन यानी पंचम दा का ये आखिरी दौर का मास्टरपीस है। इसमें वायलिन और हल्की गिटार स्ट्रीमिंग से बरसात की बेहद शांत और रूहानी फुहार का एहसास कराया गया था।

दिल तो पागल है। 1997 में बनी ये फिल्म थी और इस गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की। उत्तम सिंह संगीतकार हैं और उन्होंने बच्चों के कोरस, ड्रम और थाली जैसी खनक का इस्तेमाल करके बारिश की पहली बूंदों की खुशी और चंचलता को जीवंत कर दिया है।

इसी के साथ गीतों का कारवां कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं नियामत हुसैन का गाया हुआ ये लोकगीत।

कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले एक विशेष सूचना सुनिए। श्रोताओं, आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम आप और हम के रिकॉर्डिंग गुरुवार 2 जुलाई 2026 को यानी आज 1:15 से 1:45 तक की जाएगी। यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव, शिकायतें, विचार या बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए हमें 01892224391 इस टेलीफोन नंबर पर फ़ोन करें। आपकी सहभागिता हमारे कार्यक्रमों को और अधिक उपयोगी एवं रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो याद रखिए, गुरुवार 2 जुलाई 2026 यानी आज दोपहर 1:15 से 1:45 तक फ़ोन कीजिए। फ़ोन नंबर है 01892224391 01892224391। इस कार्यक्रम में आप और हम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सूचना समाप्त हुई।

सड़क बनानी चाहिए मोड़ लगदा झबड़े उठाना बड़ा चोरी लगदा सड़क।

खड़ी उठ खड़ी मिंजो चाह बनाई दे हो, खड़ी उठ खड़ी मिंजो चाह बनाई दे।

अंकुश संदल का गाया हुआ ये लोकगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है ऋषि कुमार ने।

ऋषि कुमार के गाए इसी लोकगीत के साथ पहाड़ों के सुर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य के 158 सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है। कैबिनेट सब कमेटी की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई बैठक में ये सिफारिश की गई। अब इस सिफारिश पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। इन स्कूलों में तैनाती के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई चयन परीक्षा में 6,084 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि इन स्कूलों में लगभग 6,200 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। राज्य सरकार द्वारा खोले जा रहे इन सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण अभी तक लगभग 500 विद्यार्थी इन स्कूलों को छोड़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता वीबी जीराम जी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि वीबी जीराम जी योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार की पारदर्शिता, रोजगार के अधिकार, काम के भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खत्म हो गए हैं और इसी से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू परेशान है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मनरेगा में सिर्फ 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जबकि वीबी जीराम जी में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कमी की है। तेल कंपनियों ने विमान ईंधन की दरों में भी 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। जानकारी के अनुसार अब 19 किलो वाला वाणिज्यिक

0: कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। केशव चौहान ने कहा कि भाजपा को छोड़ कांग्रेस अपनी चिंता करे, क्योंकि राज्य की जनता कांग्रेस के झूठ से तंग आ चुकी है।
1: मेरा कांग्रेस के महासचिव से आग्रह है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ दें। अभी प्रदेश भर में पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय में उनकी हार हुई है, उसको छुपाने का, उसको दबाने के लिए ये इस प्रकार के प्रोपोगंडा कर रही है।
0: शिमला जिले में मॉनसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और आपदा परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए

0: 20 सदस्य शामिल है। शिमला की अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा ने कहा है कि जिला प्रशासन मानसून के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा हुई। इस दौरान मंडी जिला के ओट के पास पहाड़ से गिरी एक चट्टान की चपेट में आने से एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। प्रदेश में मानसून से जुड़ी घटनाओं में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज चंबा जिले के पांगी और लाहौल घाटी में 2 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। उधर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जिले में ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ आने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए लोगों को सचेत रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। इधर लोक निर्माण विभाग ने मानसून को देखते हुए विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
1: ये थे प्रादेशिक समाचार
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब पेश किया जाएगा कार्यक्रम महक पंजाबी और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह के साथ।
3: दोस्तों, महक पंजाबी प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है। मिट्टी दी महक होवे या मां बोली दी मिठास, दोवें दिल विच उतर के अपना घर बना लैंदियां हन। पेश है प्रोग्राम दा पहला गीत।

हर बोली एक कहानी है, हर धुन एक याद, अते हर पंजाबी गीत एक एहसास। पेश है अगली पेशकश।

फुल्लां दी खुशबू हवा विच रह जांदी है, पर पंजाब दी महक दिलां विच। आओ इस एहसास नूं गीतां राहीं जीए।

चन्न जदों पंजाब दे आसमान च चमकदा है तां लगदा है रात कोई गीत गुनगुना रहा है। पेश है अगला गीत।

मुहब्बत की असली पहचान मिलन विच नहीं सगो उस कमी विच हुंदी है जो किसी दे ना होण ते महसूस हुंदी है। इसे खूबसूरत एहसास नाल पेश है तेरे बिना ना गुजारा है।

हर महफिल का एक सोना अंत हुंदा है, पर सुरा का सफर कदे मुकदा नहीं। अज दी महक पंजाब दी नूं विदा कहन तो पहला आओ सुनते हैं वो गीत जो तुहाडे मन नूं छू जाएगा।

महक पंजाब दी। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
1: इसे तराशा जाता है
2: और
1: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओं, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में

0: है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं,
0: जी
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोतो, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं
2: और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
5: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
6: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
5: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
7: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
7: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दूं?
7: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
7: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
8: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
9: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
7: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
9: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
9: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
7: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है।

0: ना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
2: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है
2: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
4: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
5: गाड़ी में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास जा रहा
2: है कुमार देवदत्त। आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
6: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
2: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
7: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया।
8: आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
9: नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं चल चल।

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे।

0: हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
1: सूर्य ग्रह है या तारा?
0: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
0: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
2: अच्छा सर।
1: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
3: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
1: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
1: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
3: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश, खूब पढ़ो और देश का नाम हमें

0: भविष्य रोशन करो।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
2: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मिथुन के सजे संगीत के साथ। सोनू निगम और साथियों की आवाजें हैं, फिल्म है बॉर्डर 2।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है कुछ ही देर में समाचार आप सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की

0: जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits.
2: भारत-जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanai Takaichi, in New Delhi. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Mutual trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मों से कुछ भजन। श्रोताओं, जब दिन ढलने लगता है तो मन भी कुछ पल ठहरने की चाह रखता है, और मन को ठहराव देने के लिए सबसे बेहतर है भजन। तो आइए भक्ति संगीत की इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। उस परम शक्ति को नमन करते हैं जो हर वक्त हमारा मार्गदर्शन करती है।

असद भोपाली का लिखा ये भजन उषा खन्ना के संगीत के साथ सजा आशा भोसले ने इसे आवाज दी। अनोखा बंधन फिल्म का ये भजन था। भजनों का आनंद इस समय आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम में आज फिल्मों से कुछ भजन शामिल किए जा रहे हैं। ईश्वर का नाम मन को स्थिरता देता है और भजन उस नाम को सुरों में पिरो देते हैं। आइए कार्यक्रम में अब सुने एक और भक्तिमय प्रस्तुति।

गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये भजन हमने लिया फिल्म तीसरी आंख से। फिल्मों से कुछ भजन इस समय आप सुन रहे हैं और आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से। श्रोताओं, भक्ति संगीत केवल कानों तक नहीं सीधे मन तक पहुंचता है, तो आइए आपके मन तक ये अगला भजन पहुंचा रहे हैं। आनंद लीजिए इस मधुर भजन का।

लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये भजन अभी आपने सुना स्वर्ग से सुंदर फिल्म से। इसी मंगल कामना के साथ कि प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आज के संध्याकालीन भजन बस यहीं पर संपन्न होते हैं। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

कार्यक्रम युवा मंच में सभी युवा दोस्तों का, सभी श्रोताओं का स्वागत। सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ युवा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किसी के हाथ में कॉफी होगी, किसी के सपने बुनने का सिलसिला जारी होगा, किसी के सामने किताबें खुली होंगी और कोई सरकारी नौकरी का सपना लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने की तैयारी में होगा, तो कोई सोच रहा होगा कि आखिर करियर की सही शुरुआत कहाँ से की जाए। अगर आप भी उन्हीं लोगों में हैं जो सिर्फ सपने देखते नहीं, उन्हें पूरा करने का दम भी रखते हैं, तो अगले 25 मिनट का ये कार्यक्रम जो आप हमारे साथ सुनेंगे, उसे छोड़कर, यानी अपने रेडियो सेट को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ गाने नहीं बजते, यहाँ मिलेगी करियर की सही दिशा, मिलेगी रोजगार की ताज़ा जानकारी और फिर चलेंगे हम विज्ञान की दुनिया में, जहाँ आज की कल्पना कल की हकीकत बन जाती है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट अपॉर्चुनिटी भी आपके पास होगी, टेक्नोलॉजी भी और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की बेहद शानदार गीत के साथ। गीत से पहले आपको बता दें, आज रोजगार समाचार हम आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही साथ बात होगी विज्ञान जगत की।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने इसे ट्यून किया है और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं। उम्मीद है इस गीत ने आपको थोड़ा सा रिफ्रेश किया हो। दोस्तों अब बात करते हैं कार्यक्रम में आगे। डिग्री मिल जाना सफलता नहीं, सही अवसर मिल जाना भी सफलता नहीं। असल जीत तब होती है जब सही समय पर सही जानकारी हम तक पहुंच पाए। कई बार नौकरी इसलिए नहीं छूटती कि योग्यता कम थी, बल्कि इसलिए छूट जाती है क्योंकि जानकारी समय पर नहीं मिली थी। इसलिए अगले कुछ मिनट कागज और पेन तैयार रखिए या फिर मोबाइल का नोटपैड खोल लीजिए, क्योंकि अब बारी है रोजगार समाचारों की। सबसे पहले बात बैंकिंग क्षेत्र की। बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के 779 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया 30 जून से

शुरू हो चुकी है और 20 जुलाई 2026 तक चलेगी। अलग अलग स्केल के अनुसार आयु सीमा और अनुभव निर्धारित किया गया है। चयन ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत पात्रता, अनुभव और अन्य शर्तें आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर जाएं और करियर्स सेक्शन देखें। युवा दोस्तों, अगर आपका सपना प्रोविजनरी ऑफिसर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना है तो अगला समाचार आपके लिए है। IBPS ने PO मैनेजमेंट ट्रेनी और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती का संक्षिप्त नोटिस जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2026 से शुरू हो गए हैं। विस्तृत अधिसूचना में रिक्तियों की संख्या, योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और अन्य सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार www.ibps.in पर विजिट करके अधिक जानकारी इससे संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। युवा दोस्तों, अगर आपका सपना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा बनने का है तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के ASTRAC ने टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, लाइब्रेरी असिस्टेंट ए और कुक ए सहित विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। अलग अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है, जिसकी पूरी जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in के करियर्स सेक्शन पर जाकर देखी जा सकती है। अब बात करते हैं उन रोजगार अवसरों की जो खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद काम के हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। विभिन्न विषयों पर लगभग 369 असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेज कैडर के लिए ये आवेदन भरे जाएंगे। योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या UGC के अनुसार नेट, सेट, स्लेट या समकक्ष पात्रता मांगी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2026 है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in इस पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर के लिए भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गृह विभाग में साइंटिफिक ऑफिसर के पद के लिए आवेदन जो है उनकी अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश नॉन टीचिंग पदों की भर्ती कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 12वीं, 10वीं, ITI डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग पद उपलब्ध हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 है और आधिकारिक वेबसाइट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश पर जाकर आप इससे संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। रोजगार समाचारों के आखिर में अब हम बात करेंगे JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भर्ती की आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें JNU ने ग्रुप ABC के तहत कुल 267 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पद हैं सीनियर असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, मेस हेल्पर आदि। योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं और संबंधित विषय में ग्रेजुएशन और मास्टर्स मांगी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026

निर्धारित की गई है और आवेदन आप कर सकते हैं JNU रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ये आवेदन किए जाएंगे। दोस्तों ये थी रोजगार समाचारों की बात। नौकरी सिर्फ एक मंजिल ही नहीं, ये उस सफर की शुरुआत होती है जहां आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपके सपने साथ साथ चलते हैं। अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी आपके काम की होगी तो उसे आप भी ग्रहण कर सकते हैं और साथ साथ अपने दोस्तों तक भी वो जानकारी ज़रूर पहुंचाइएगा। हो सकता है आपके द्वारा साझा की गई सूचना है किसी के करियर के लिए सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए आपके साथ साथ। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे, एक प्यारा सा गीत आपके लिए और लेकर आ रहे हैं।

103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, बात करते हैं विज्ञान जगत की। दोस्तों, हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, लेकिन किसी भी मशीन को चलाने के लिए एक कंट्रोल सेंटर की जरूरत होती है। हमारे शरीर का वही कंट्रोल सेंटर है हमारा दिमाग। जी हाँ, दिल की धड़कन कितनी तेज होगी, सांसें किस गति से चलेंगी, हाथ कब उठेंगे, आंखें कब झपकेंगी, भूख कब लगेगी और थकान कब महसूस होगी, इन सभी प्रक्रियाओं का संचालन किसी न किसी रूप से हमारा मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग करता है। यही वजह है दिमाग विज्ञान जो है वो दिमाग को शरीर का कमांड सेंटर मानता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब रात को हम सो जाते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ आराम कर रहा है, लेकिन तब भी हमारा दिमाग अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता। विज्ञान कहता है कि नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि वह समय है जब हमारा मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग कई ऐसे महत्वपूर्ण काम करता है जिन्हें जागते हुए करना संभव नहीं होता। वह दिन भर की यादों को व्यवस्थित करता है, जरूरी जानकारियों को सुरक्षित रखता है, गैर जरूरी सूचनाओं को अलग करता है और खुद को अगले दिन के लिए तैयार करता है। यानी बाहर से भले ही सब कुछ शांत दिखाई दे, लेकिन हमारे दिमाग के भीतर विज्ञान का एक अद्भुत संसार पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा होता है। दोस्तों, विज्ञान सिर्फ किताब

किताबों का विषय नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे भरोसेमंद साथी है। तो आइए आज विज्ञान जगत में जानते हैं, जब हम सोते हैं तब हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारा दिमाग क्या काम करता है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में एक और गीत अपने युवा दोस्तों के लिए, श्रोताओं के लिए।

कार्यक्रम युवा मंच में इस गीत के बाद सभी का एक बार फिर स्वागत। विज्ञान जगत में आज बात होगी नींद के विज्ञान के बारे में। हम जानेंगे कि जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग क्या करता है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो चुका है, सड़कें शांत हैं, घरों की बत्तियां बुझ चुकी हैं और आप भी गहरी नींद में हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय आपके शरीर का सबसे व्यस्त हिस्सा आपका दिमाग है, तो शायद आपको यकीन ना हो। जी हाँ, हम सोते हैं लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता, बल्कि कई बार जब हम सोते हैं तो वो दिन से भी ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। विज्ञान जगत में आज इसी अनोखी दुनिया, अनदेखी दुनिया की बात होगी जो हर रात हमारे मस्तिष्क के भीतर जागती रहती है। हम इसे ज़्यादातर लोग सोचते हैं नींद सिर्फ आराम का समय है, लेकिन आधुनिक विज्ञान बताता है कि नींद दरअसल दिमाग की नाइट शिफ्ट है। दिन भर आपने जो कुछ देखा, सुना, पढ़ा, महसूस किया, दिमाग उन सभी यादों को एक एक करके व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। ज़रूरी बातें संभाल कर रखी जाती हैं और बेकार जानकारी धीरे धीरे हटाई जाने लगती है। यानी जब आप सो रहे होते हैं, आपका दिमाग तय कर रहा होता है कि क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है। यही वजह है कि परीक्षा से पहले पूरी रात जागकर पढ़ने की बजाय अच्छी नींद लेना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गहरी नींद के समय मस्तिष्क में ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जो मस्तिष्क का अपशिष्ट पदार्थ यानी कचरा हटाने वाला विशेष तंत्र है, वो अधिक सक्रिय हो जाता है और गहरी नींद के दौरान दिमाग के भीतर एक तरह की सफाई भी होती है। जिस तरह रात में सड़कें खाली होती हैं और सफाई कर्मचारी आसानी से अपना काम करते हैं, ठीक उसी तरह गहरी नींद के दौरान दिमाग

से दिन भर के दौरान बने अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। यही प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क को अगले दिन फिर तैयार करती है पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए। अब जरा बात अपने सपनों के बारे में करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बिल्कुल सच जैसा लगा हो? दिलचस्प बात यह है कि सपने देखने के दौरान दिमाग का वह हिस्सा जो कल्पनाएं और भावनाएं पैदा करता है बहुत सक्रिय हो जाता है। इसीलिए कभी हम उड़ने लगते हैं, कभी बचपन की गलियों में पहुंच जाते हैं और कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे सालों पहले मुलाकात हुई थी। यानी सपने कोई जादू नहीं, हमारे दिमाग की एक रचनात्मक दुनिया की झलक है। और भी कुछ रोचक तथ्य हैं। हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जो ये तय करने में मदद करती है कि कब हमें नींद आएगी और कब हम अधिक सतर्क महसूस करेंगे। यही कारण है जब रात में जागना और दिन में सोना लंबे समय तक शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हम गहरी नींद में होते हुए भी कुछ महत्वपूर्ण आवाज़ों को, जैसे अपना नाम, बच्चे के रोने की आवाज़ या अलार्म की प्रक्रिया जो होती है उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यानी दिमाग नींद में भी पूरी तरह से बंद नहीं होता। कुछ अध्ययनों से तो ये भी संकेत मिलते हैं कि पर्याप्त नींद लेने के बाद लोग कई समस्याओं का बेहतर समाधान खोज पाते हैं। नींद के दौरान दिमाग अलग अलग जानकारियों के बीच नए संबंध बनाने की कोशिश करता है। अगर आप कई दिनों तक ठीक से नींद नहीं लेते तो सबसे पहले असर आपकी याददाश्त पर, एकाग्रता पर, निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। यही कारण है कि डॉक्टर और वैज्ञानिक केवल अच्छी डाइट और व्यायाम ही नहीं बल्कि अच्छी नींद को भी स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी जरूरत मानते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि सोकर समय बर्बाद मत करो तो मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, मैं समय नहीं बर्बाद कर रहा या कर रही, मेरा दिमाग अपनी सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी कर रहा है। क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर आराम करता है लेकिन हमारा दिमाग आने वाले कल को बेहतर बनाने में जुटा होता है। इसी दिलचस्प जानकारी के साथ विज्ञान जगत में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं युवा दोस्तों आज की ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हों। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ और तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया का।

जी बेशक, ये आपकी मोहब्बत है हमारे साथ, इसीलिए आप जुड़े रहते हैं और यूं ही जुड़े रही हमारे साथ। युवा मंच कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन अभी और भी मनोरंजन आगे हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर होंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की, जिन्हें हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किया जाएगा। 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजा गराइनिया, ये कार्यक्रम शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। 7 बजे समाचार आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, इन्हें हम रिले करेंगे। 7:10 का समय रहता है किसान बागवान भाई बहनों के कार्यक्रम किसान वाणी के प्रसारण का। शाम 7:45 पर एक बार फिर हम ले चलेंगे आपका आकाशवाणी शिमला की स्टूडियोज, जहाँ से आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस लेकर हाजिर होंगे रात 8 बजे। देशभक्ति गीत सुनिएगा रात 8:30 पर। रात 8:45 पर समाचार संध्या 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम का समय रहेगा, और आज के इस कार्यक्रम में अभिनेता अभिनेत्री क्रम में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म अभिनेता राजकुमार द्वारा अभिनीत फिल्मों

से या उन पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी गीत। रात 9:30 पर लुत्फ उठाइएगा कार्यक्रम रंगे गजल का। 10 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। और आकाशवाणी दिल्ली से ही सभा के अंत में समाचार आप सुनेंगे, जिनमें 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार शामिल होंगे। ये था कार्यक्रमों का विवरण। FM बैंड 103.4 MHz पर आप हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में हम आपके लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज, जहां से 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने और राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप ओमान पहुंची है। वहां के लोगों ने हिमाचल के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता व स्वाद की सराहना की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोलेगी। उन्होंने बागवानों से गुणवत्ता, ग्रेडिंग और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि हिमाचल वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले फलों के आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके। लाहौल स्पीति जिले के प्रसिद्ध छरमा यानी सीबक थॉर्न को जीआई टैग मिला है, जिससे अब इस औषधीय पौधे से बने उत्पादों को देश विदेश में अलग पहचान मिलेगी। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग का आभार व्यक्त किया है। सीबक थॉर्न को जीआई टैग मिलने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: स्पीति घाटी के प्रसिद्ध छरमा यानी सिबकथोन को जीआई टैग मिल गया है। सिबकथोन एक औषधीय गुणों से भरपूर फल है, जिसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे जूस, जैम, हर्बल उत्पाद और कॉस्मेटिक सामग्रियां तैयार की जाती है। जीआई टैग मिलने से अब स्पीति छरमा और इससे बने उत्पादों को देश विदेश में अलग पहचान मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले लाहौल के पारंपरिक दस्ताने और जुराबों को भी जीआई टैग मिल चुका है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करवा रही है। किन्नौर जिला के निचार उप

0: मंडल के भावानगर में आज जनसमस्याएं सुनने और लोगों से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के समान विकास के लिए कार्य कर रही है। बाद में उन्होंने निचार ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित कार्यशाला को भी संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस ने आज से राज्य में संगठन विस्तार अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान अगले एक महीने में 8 से 10 हजार लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन आज शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रामपुर से 2 बार भाजपा प्रत्याशी रहे ब्रिजलाल ने 250 से अधिक सदस्यों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
1: संगठन विस्तार कार्यक्रम इसकी आज हमने शुरुआत की है। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य जी हमारे साथ है और रामपुर से हमने इसका शुरुआत किया है और आज ब्रिजलाल जी रामपुर से संबंध रखते हैं और ये अपने कम से कम 250 से 300 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ है और सभी लोगों ने यहाँ पार्टी को ज्वाइन किया। इसी प्रकार के प्रोग्राम जो है हम पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे और पूरे प्रदेश में लगभग हम 8 से 10 हजार लोगों को जोड़ेंगे।
0: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने का दावा पूरी तरह झूठा और जनता को गुमराह करने वाला प्रयास है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जन विरोधी नीतियों और विफलताओं से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का राजनीतिक नाटक कर रही है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा। सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में आज एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कालाअंब पुलिस थाना के एसएचओ बलवंत सिंह ने बताया कि पुलिस व दमकल विभाग की टीमें मौके पर आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर आसपास के सभी उद्योगों को तुरंत खाली करवाकर काम बंद करवा दिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल में पहाड़ी से पत्थर गिरने की दर्दनाक घटना में एचआरटीसी के परिचालक ज्ञान सिंह की मौत हो गई। ज्ञान सिंह मंडी जिला की जोगेंद्रनगर तहसील के लड़भिलोड़ गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार बस अपने निर्धारित रूट पर थी और आज सुबह म्याड़ नाला के पास बस रुकने पर ज्ञान सिंह ब्रश करने के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनके सिर पर आ गिरा जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप हमें सुन सकते हैं। शाम वही अच्छी लगती है जिसमें सुकून हो और सुकून वही मिलता है जहां संगीत साथ हो। और संगीत साथ लेकर आए हैं हम, कार्यक्रम है सुरमई सांझ। तो आप सबका स्वागत है सुरमई सांझ कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त नीलम। और मेरे साथ और आपके साथ मिलकर शुरू करते हैं गीतों का ये सिलसिला।

दिन भर की भागदौड़ की थकान पल भर में छुअंतर हो जाती है अगर मौसम प्यारा सा हो और साथ हो गीत संगीत का।

सुरमई सांझ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से। दोस्तों, गीत संगीत सुना ही नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। अब बारी है एक ऐसे खूबसूरत नगमे की जो यकीनन आपकी शाम को और भी खास बना देगा, और मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है।

सुरमई सांझ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। शाम सच में सुरमई और रंगीन हो जाती है जब गीत संगीत का साथ होता है, और जब मधुर मधुर से प्यारे प्यारे से गीत कानों में पड़ते हैं तो बस दिल खुद ब खुद गुनगुना उठता है।

श्रोता, उम्मीद है आज की आपकी शाम को हमने थोड़ा सा खूबसूरत बनाया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि जो भी थोड़ी सी कसर रह गई है रंग भरने की आपकी शाम में, वो पूरी हो जाए इस आखिरी गीत के साथ। सुनिए ये आखिरी नगमा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजां गराइंदियां।

0: है ना।
1: हाँ ज्ञान दे अभाव कन्नै जेह्ड़ा सा ऐ एह् सारियां चीज़ां तुस नहीं अपनाई सकदे। कन्नै अगर दिक्खा जी ज्ञान दा अभाव ऐ कन्नै तुहानू जो इन्हां चीज़ां सुन सुनाइयां गल्लां तुस प्रयोग करदे न तां कुत्थी ना कुत्थी एह् फायदे ही है जगह जेह्ड़ा सा नुकसान ही दिनियां।
0: दिंदी हाँ
1: जियां अजकल अहां दिक्खा दे कि बरसाती दा मौसम है कन्नै विभिन्न प्रकार दियां अहां सब्जियां भी लगाइयां है ना जी सारियां
0: हाँ
1: चीज़ां
0: जी
1: लगाइयां तां कई बारी क्या होंदा कि अहां दिखदे कि पानी इ'यां बड़बहार जालू होंदी ना साढ़े खेतों विच तां साढ़ी फसल जेह्ड़ा सा थोड़ी ए पीली पौना लगी पौंदी है कोई
0: हाँ
1: पौधे
0: जी
1: मरना लगी
0: हाँ
1: पौंदे।
0: हाँ
1: पर दिखा जी सारे का पता नहीं है या फिर जेड़ा जानदे कि भाई पानी दी मार है तां ए प्योली होआ दी कने
0: हाँ
1: सह सुनी सुनाई गल होए कि प्योली हो गई तां चलो जी यूरिया दे छट्टा दे दिया
0: हाँ
1: है ना
0: जी
1: जी तां
0: हाँ
1: सह चीजें भी कुथी ना कुथी अगे जाई के जेड़ा सह नुकसान कर दी है। तां सह बोल देना कि अगर जानकारी दा अभाव है तां तिसी तो हां दुरुस्त करा भाई अपनी जानकारी है ताकि अगर तो हां फसल करा दे तां कम कार करा दे तां इस कम में जो कियां करना है तिदियां क्या बारे कियां ने सभी तुहानू पता जेड़ा सह होना चाहिए।
0: बिल्कुल हाँ जी दिक्खा जी उन्नत तकनीकां दे बारे च यहाँ गल करा कर देना ना। जियां दिक्खा रतीलू भाई जी अजकल तां बीज ही जेह्ड़े सै इक इक इन्हीं अनाज दे कितने प्रकार दे जेह्ड़े सै बीज आई गए ना।
1: बिल्कुल
0: जियां तुहां दस्या कि हाँ जो ज्ञान होना चाहिए तो बीज भी जलू अहाँ कोई भी पनीरी लैनी है जां कोई बीज अहाँ जलू खरीदया या गां वास्ते कभी भी लैना ना ना
1: जी जी
0: तो ये नहीं दिखना कि बड़ा बांका बीज है या
1: कने
0: बड़ा
1: महंगा भी है
0: महंगा है
1: कने। हाँ मैं तुहाड़ी
0: अपने।
1: गल्ला टोका दा पाऊ
0: हाँ
1: कि दिखा हाड़े सारे दे एक दिमागे च बेही यही होंदी चीज ना एक
0: हाँ
1: के अहाँ फलानी चीज महंगी लै दे फलाना
0: हाइब्रिड
1: बी
0: हाँ
1: महंगा लै दे तां इन्नी बड़ी वधिया
0: हाँ
1: अग्गे जाए
0: जी
1: के उत्पादन देना
0: हाँ
1: तां ऐसी चीज़ नहीं है। ये सारियां चीज़ां जेड़ा सै अनुमोदित कितियां होनियां किस्मां है ना
0: हाँ
1: जी कने भौगोलिक
0: भौगोलिक
1: परिस्थितियां जो
0: हाँ
1: दिखी के
0: जी
1: ही इन्हां दी जेड़ा सै बनाए होंदे।
0: हाँ जी हाँ दिखा झारखंडी क्षेत्र है ना।
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: दे फिर पलम आई जाता फिर निचला जड़ा सा चंगर है ना तो अपने इलाके दे हिसाबे कन्नै जी तुहां वाल जी कोई ऐसे जी धान की गल हाँ करिए तो
1: हाँ
0: कुछ ऐसी किस्म जी घट पानी च तैयार हो जाए
1: जी जी
0: कुछ ऐसा जिन्हें जड़ा सा ज़्यादा
1: ज़्यादा
0: पानी
1: पानी की जरूरत होंगी
0: हाँ
1: तो ये सारियां चीज़ां सही हाँ पहले भी बोला दे है कि जानकारी रखनी है कि हाड़ी भूगोलिक परिस्थितियां हाड़ी जलवायु का हिसाब केदा है उसी हिसाबे ने ही अनुमोदित कितनी किस्मां दे बीजां का चुनाव करना चाहिए
0: हाँ
1: ताकि
0: जी
1: साढ़े क्षेत्र में साड़ी फसल जेड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा हो है ना जी।
0: हाँ जी
1: तो ये सारियां चीज़ां ता ही हो सकती हैं जालू अहाँ थोड़ा दिया भाई जानकारी रख गए
0: हाँ
1: है ना
0: जी
1: जी
0: जी
1: तो जानकारी का अभाव जेड़ा सा अहाँ तो नहीं रखना कने देखा जी ज़्यादा से ज़्यादा हड़ा लक्ष्य यही रहता कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो संजो तो अंजो ना जी।
0: बिल्कुल हाँ जी
1: कने एक होर फायदे की गल जेड़ा सा हाड़े किसान करते कने अहाँ तो हाँ भी सारे करते कि थोड़ी देर रुण झुण भी जरूर होना चाहिए टियाले भर
0: हाँ
1: तां
0: जी
1: आवा कर दे शुरू एक रुण झुण पर उसते पहले एक
0: सनिया है ना।
1: जी जी
2: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
3: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान हर घर तक पहुँचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रूपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI पैट स्कैन अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार जन जन के साथ सुक्खू सरकार स्वस्थ हिमाचल खुशहाल परिवार सुक्खू सरकार सबके द्वार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जी पहु तां दिखा सुनिया अहां ए लोकगीत
1: हाँ जी
0: कना भाई दिखा झूम झड़ाका जेड़ा सा खूब जेड़ा सा रंगमंच होइया
1: हाँ
0: कना हुण इस रंगमंच ते बाद अहां गल करनी अगली जानकारी दिता। अगली जानकारी है संजुल कृषि उन्नति योजना दे बारे च।
1: जी
0: कना दिखा जी अहां तो हां सारे दी ये कोशिश रहंदी कना सरकार दी भी यही कोशिश रहंदी के किसानों का ज़्यादा तो ज़्यादा मार्गदर्शन कित्या जाए
1: हाँ भला हो
0: कना
1: है। हाँ
0: हाँ ज़्यादा तो ज़्यादा तिना का भला हो है कना ऐसिया तिने योजना दसिया जान जेड़ा सरकार चलाई है तिना ताई
1: हाँ
0: के
1: जी
0: तिना दा चौतरफा विकास जेड़ा सै
1: ओ
0: होवे।
1: है।
0: कने
1: हाँ
0: एक कृषि उन्नति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जेड़ा कि किसानों की आर्थिकी जो ज़्यादा तो ज़्यादा मजबूत करने ताई सरकार द्वारा चलाई गई थी। कने इस योजना के तहत किसाना जो कृषि उत्पादन विच भारी वित्तीय सहायता जेड़ा सह दिती जांदी है यानी कि अहां अगर तिना दे उत्पादन की गल करिए तो ज़्यादा तो ज़्यादा तिना यो दाम जेड़ा सह अंत विच इस उत्पादन का मिलता। कने
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: सारे ते बड़ी गल होर इस योजना की कि सह दाम तो मिलता ही मिलता पर उस कन्ने एक प्रोत्साहन राशि बोनस दे तौर पर भी उन्हें किसानों जेड़ा सह सरकार द्वारा दिती जाती है।
1: हाँ जी
0: जी अहां धान की गल करिए सरकार द्वारा जेड़ा सह 3100 रुपये प्रति क्विंटल दे हिसाबे ने इस बारी जेड़ा सा तिन्हें पैसे दिते गए।
1: हाँ
0: कने
1: जी
0: इस दे अलावा इस स्कीम दे तहत तिन्हें बोनस राशि भी प्रदान जेड़ा सा की गई। कने इस योजना दी दिखा जी

0: एक वड्डी गल होर है कि फसल विविधीकरण जो ये ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोत्साहित जड़ा सा करता है, यानी कि गलाने का मतलब ये नहीं है कि केवल मात्र धान दी फसला तक ही इस योजना का लाभ जड़ा सा सीमित है, बल्कि दलहनी फसलां होई गई, तिलहनी फसलां होई गई, कोदो कुटकी छली होई गई, कपास, ये सारिया खरीफ दियां जड़ा फसलां न जिन्हें जो किसान उगाते हैं तिना वास्ती जड़ा सा इस योजना के तहत भी दस
1: हाँ
0: हज़ार से 11 हज़ार तक की विशेष प्रोत्साहन राशि का सरकार द्वारा प्रतिबंध जड़ा सा कित्या जांदा है।
1: हाँ जी
0: कने अगर इस योजना ने जुड़ने वास्ती पात्रता दी गल करिए तां किसान दा एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। कने केवल व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाले किसान जो ही इस योजना दा फायदा जड़ा सा बहु
1: मिलना।
0: मिलता है। कने
1: हाँ
0: देखा जी ऐसे किसान जड़ा ट्रस्ट बनाए के कम करते, मंडियां हो गई या फिर निजी कंपनियां ने जुड़े होंगे किसान है ना जी,
1: हाँ
0: निजी कंपनियां दा काम करते, तो सह जड़ा किसान साथी है ना इस योजना के तहत कोई भी फायदा जड़ा सा नहीं ले सकते। कने आवेदन कियां करना भाई इस योजना का, ये भी थोड़ा जहा दसी दईए। तो नज़दीकी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां के माध्यम ने या फिर कृषि विभाग के माध्यम से एकीकृत किसान पोर्टल पर जड़ा सा
1: हाँ
0: किसान जड़ा सा पंजीकरण अपना जड़ा सा कर
1: करवान।
0: सकते है ना।
1: हाँ जी
0: कने तुहानू पता ही है अजकल इंटरनेट का जमाना है भाऊ, जालू भी तुहां एक सर्च करके किसान पोर्टल के बारे में तो कई ऑप्शन जो खुली आने,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: इस योजना ने जड़ा जे पोर्टल जुड़े है तो हाँ उस पर लॉग इन करके जड़ा सा अपना आवेदन करी सकते भाऊ है ना
1: जी
0: जी। तो ये थी थोड़ी देई जानकारी कृषि उन्नत योजना के बारे च। कने हुण जड़ा सा भाऊ अगली योजना थोड़ी क्या वे?
1: सह जड़ी सह ये है कि फिर से जड़ा सा एक सनेहा का ना, फिर से जड़ा सा है मनोरंजन।
0: जी जी बिल्कुल,
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। टीएनसी अप्लाई।
3: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: जी ता लोक गीत के बाद फिर ते जानकारियां दा सिलसिला टियाले पर जड़ा से हाजिर है ना।
1: बिल्कुल
0: कने हुण अगली गल रसीलू भाई इं कि दिखा।

0: जड़े यहाँ दे किसान साथी अपनी फसल जो जड़ असें लगाई बैठे ना पनीरी धान दी जी
1: जी
0: हुई
1: जी
0: दिखा हूँ जड़ असें तिना खरपतवार नाशी भी जड़ असें छिड़काव वगैरह करने ना ना
1: बिल्कुल
0: ता हाँ इसी बारी जड़ असें गल करनी है क्योंकि दिखा हूँ जगह जगह जी कोई तरह तरह दे अजकल तुम्हें पता कितने सारे जड़े से खरपतवार नाशी दवाइया ना ना
1: जी। वैसे तो
0: हाँ
1: भाऊ अहां टियाले दे माध्यम ने ज़्यादा तो ज़्यादा यही बोलते किसान साथी हैं कि
0: हाँ
1: दिखा जी ये जड़ा रसायन है इन्हें ज़्यादा तो ज़्यादा तो हाँ कोशिश करनी है कि दूरी बनाई के रखनी है,
0: हाँ
1: चाहे सह तुहाड़ी अपनी खुद की दूरी है या फिर तुहाड़े खेत की दूरी है, पर इन्हें थोड़ी दूरी बनाई के रखनी है। पर फिर भी कुछ एक जगह ऐसी होनी है भाऊ जिथू सांझो जड़ा सा इन्हों का प्रयोग जड़ा सा करना ही पे जाता।
0: हाँ तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक जड़ा सा करना है कने बिल्कुल पहला समझी लेना कि ये जितनी मात्रा दसी हो है उतनी ही डालनी है जड़ी से ज़्यादा नहीं जड़ी से पाई देनी क्योंकि फसल जो भी नुकसान कर दी ना
1: जी जी
0: ता बिल्कुल सही हिसाब कने जितनी मात्रा है कने पूरा मौसम का हिसाब जड़ा से दिखी कि ये सारे काम जड़ा से करने ने कने अपने आपे जड़ा से पूरे जियां जिसी बोलते ना हाँ मास्क ग्लव्स वगैरह पहनी के जड़ा से ये काम करना है ना
1: जी जी
0: दिखा तुझे पता कि जियां कोई भी कीटनाशक है तो जहर ही है ना
1: जहर
0: ते
1: बिल्कुल
0: अहाँ तो इं दिखा अहाँ तो जियां चमड़ी रोग हो या कोई होर है इं सह लैने कोई दिक्कत है कई तरह दी
1: तिना
0: ऐसी
1: तिना बंदे
0: बीमारियां
1: तां मैं समझदा
0: हाँ
1: कि इन्हां चीज़ां ने छेड़ना ही नहीं चाहिए जिन्हें सांस
0: हाँ
1: वगैरह की दिक्कत है ना जी।
0: जी हाँ जी
1: कने एक होर सारे ते वड्डी गल जालू के तुहां अपनी पट्टियां विच छिड़काव कर लिया पाऊ, कने कई बारी अहां दिखदे कि संजल थोड़ी देर दवा जिहड़ा सा दे दे रसायन जिहड़ा सा बची जांदे,
0: हाँ
1: तां अहां क्या करदे घरै कुथी भी इन्हां दा सट्टा दे दिंदे, या
0: हाँ
1: फिर ज़्यादा तो ज़्यादा साड़ी कोशिश यह रहिंदी कि भाई घरै नहीं रखनी कने घर वाला रखे होंदे है
0: हाँ
1: ना। तां जालू जे इन्हां दा तुहां निपटारा करना है इन्हां दा तुहां रखनी है कुथी भी किसी भी प्रकार ने, तां कोशिश यह करनी है कि तुहाड़े छोटे बच्चे जिहड़ा घरे च हन सह इन्हां तक ना पुजी पान, कने इदे सोगी सोगी जिहड़ा डंगर बच्छू होंदे सह भी
0: हाँ
1: इन्हां तक नहीं पुजी सकन, क्योंकि तुहानू पता ही है सह बोलते ना कि सावधानी हटी कने दुर्घटना घटी, तां किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे इस वास्ते जिहड़ा सा तुहां इन्हां चीज़ां ते थोड़ा ध्यान रखना है कने हिसाब ने कम करना है
0: जी तो फिर जरा से चलते चलते सुनते नहीं एक और लोक गीत है ना
1: जी। पर उससे पहले कुछ एक स्नेह
2: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख, साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स, और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
3: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: इसी कन्नै कार्यक्रम का समय इतों ही संपन्न होने जो है। तकनीकी सहयोग अहें दिता विकास पठानिया ने, कन्नै कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह, उन्हां दुनिया दी अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां गराइंदियां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर

अयोध्या घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुना करते सारे किसान कन्नै बागवान भाई भैन का एक बारी फिरी ते स्वागत कन्नै अज टियाले पर मौजूद मैं यानी रसीलू राम कन्नै मेरा साथ दे दे किसान मित्र होर तां पाऊ तुहां जो भी एक बारी फिरी ते राम राम
1: जी। स्वागत है सारें दा कार्यक्रम दे विच कन्नै। शुरुआत जेड़ी से ओ यही है हुण कार्यक्रम किसान वाणी दी है
0: ना। बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ तो देखा हाँ ठहरे किसान कन्नै किसानिया दा काम यही है कि प्यागा ते लेके जलो देखा तुसीं संझा दुसना बंद नहीं ना हो जांदा
0: जी जी।
1: तां देखा किसान जेहड़ा सा पूरा दिन खेतरां विच लगे रहिंदा कहिंदा संझा घर आएगी वी सा यही गल करदे रहा वी कल्ले दा इह काम हैगा थोड़ा काम अज घट होया ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखा जी कल्ले दा प्रायोजन जेहड़ा सा अज ही करना पौंदा कहि कि जलू जे काम पई जांदा ना भाऊ तां फिर अगर अहां कल्ले दा नहीं सोचगे फिर अहां जेड़ा सा हिसाबे ने उस हिसाबे ने मतलब काम कार नहीं करी पाना।
1: बिल्कुल
0: कि पता होंदा भाऊ 4 बजे उठना है भ्यागा
1: हाँ।
0: कन्नै दरियाए जाना है पानी लियाना है
1: हाँ।
0: कल उदे पट्टिये च पुजगा पानी तो फिर पट्टियां भी लगानियां तो यह सारिया चीज़ा जेड़ा सा सारा एक प्रायोजन जेड़ा सा साढ़े सारे किसान साथियों करना पौंदा कन्नै करना भी चाहिए कह कि कम कारे दा टाइम जलू प्रपोज तो नहीं करते किसी भी प्रकार का प्रायोजन तो फिर दिक्कत तो सह बोलते ना कि पानी फिर कौन की और नहीं ले आना है ना।
1: बिल्कुल हाँ जी।
0: तो
1: पानी ते जड़ा सा एक गल जड़ी सा होर की दिखा बरसात का मौसम है ना जी अहाँ के घर बखे कोई जी चले होंगे नालिया होनी वैसे तो अहाँ के किसान साथियों से समय रेंदे काम जो सा करी लिया सारा है ना लेकिन फिर भी जलो हाँ कई बार अपने कमां कुमां लगी पौंदे कई बार ख्याल नहीं भी रहा जितू जितू जी पानी की जी निकासी के जड़े अहाँ के जड़े चले हैं नालिया हैं जी लगभग तो पक्या बनिया सारिया ने
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इन्हें पूरा जरा सा दिखी
0: प्रबंधन जरा सा करी
1: हाँ कचरा वगैरह भरोई हों ना
0: जी
1: देखो पानी का अपनी कुछ ना कुछ जगह जी से बनानी है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो यह जाने कि टाइम रेंदे सारा काम होया हुआ तो दिखा कुछ भी जरा सा अहाँ दीड़ा जी नहीं रुड़नी है ना कने रस्ते रुस्ते जड़े से अहाँ सारे बिल्कुल बांके साफ सुथरे बने रहने हैं ना।
0: रस्ते की गल जी हाड़े भावें करी दी शुरू तो दिखा जी बरसात का मौसम है जड़ा पक्के रस्ते चलो तिने तो अहम समझी सकते पर फिर ग्राएं विच ऐसे रस्ते भी होंगे पाऊ के बीड़ा दे रस्ते होंगे तिना विच दिखा जी चलना तो इं दुशवार हो जाता जलू के थोड़ा जहा घा बढ़ी जाता है ना
1: हाँ जी
0: कने उपरे तो बरसात होंगी तो तिना इस प्रकार के रस्ते अगर हाड़े किसान साथियों के या किसी भी स्रोत्या के घर दे रस्ते जा दे तिने ये चाहिए कि भाई टाइम रेंदे जड़ा सा जड़ा घा पत्थरा होंदा तिदा जड़ा छांड छटाइए का काम जड़ा सा तुह करी लैन कह कि अगे जैलू बरसात का मौसम आना तो जीजू कंडू तुम जो पता
1: हाँ,
0: ही झाड़ियों छुपते हैं घा च छुपते हैं
1: हाँ,
0: तो किसी भी प्रकार का जैलू थोड़ा जहा प्रगड़ा होंदा ना जी थोड़ी जी धुप्प होंगी तो सै सुखी सुखी जगह

0: से बैठना पसंद करते से भी
1: बिल्कुल
0: क्या कि
1: हाँ
0: जी अहाँ तो हाँ सोचते कि अहाँ भी पानी ते दूर रहन चिपचिपिया ते दूर रहन तो ये सारिया चीज़ें जोड़ा सा जीव जंतु भी कोशिश करते कि पानी ते दूर रहा जाए तो कई बार ये हड़िया रस्तियाँ भी आई जाते कने जलू बेला के बेला अहाँ तो हाँ चले होंगे खास करके जालू हड़ा था कोई टार्च ना हो संझा दे बेला
1: हाँ जी
0: या अहाँ ध्यान कुदकी कन्नै चलियो कुदकी कई बार अहाँ घाय बनना चले होंगे
1: हाँ जी
0: तो दिखा जी इन चीज़ों के बचाव जोड़ा सा अहाँ तो अहाँ ठीक रखना कन्नै खास करके हड़े घरे दे जोड़ा आले दुआले होंगे तिन्हें भी साफ सुथरा रखना ताकि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कोई जीव जंतु हैं कीड़े मकोड़े हाँ जो कोई किसी प्रकार की हानि ना पहुँचाई सकन।
1: जी तो दिक्खा रसीलू भाई जी, बड़ी बांकी गल जड़ी से तो हाँ जड़ी से दसी है। कने अहाँ दे ग्राएं बिच जड़ा सा ऐसा माहौल जड़ा सा होना चाहिए कि अहाँ दे जड़े रस्ते जी तो दिखे साफ सुथरे, अहाँ दे पानी पीने वाली जड़े जितने भी स्रोत हैं
0: जी
1: बोड़ियाँ
0: जी
1: हैं कुएं हैं सह बिल्कुल साफ हैं बरसाती, अहाँ जो जड़ा सा बिल्कुल साफ सुथरा पानी जड़ा सा पीना चाहिए ना,
0: बिल्कुल
1: तो कुल मिलाई के ताई जड़ा सा अहाँ दी सेहत जड़ी सह स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक जड़ा सा रहना है ना।
0: जी। कने ऐसा बोलते ना कि अगर थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहना तो थोड़ा सब कुछ ठीक है फिर ही है ना जी, तो
1: हाँ
0: हाँ
1: जी
0: हर कम थोड़ा ठीक है। कहें कि साहब बोलते ना कि आप भला तो जग भला है ना
1: जी
0: जी,
1: हाँ जी
0: अगर तो हाँ भू ठीक नहीं रहे तो फिर ही थोड़े होर कम कार जोड़ा तो ने जुड़े होने या लोग तो ने जुड़े होने सह कि ठीक रहने है ना जी।
1: हाँ
0: तो गलाने की गल यही है कि तो अगर तो हाँ अपनी रक्षा सुरक्षा करके ता ही तो हाँ अपने दी कने अपने कम्मे कारे जो जोड़ा सा टाइम दे सकते कने उसे ठीक ढंगे ने करी सकते। तो गलाने का मतलब यही है कि भाई सारे ते पहले अपना जोड़ा सा तो हाँ सारे ध्यान रखा खास करी के बरसात का मौसम जोड़ा इस बीच थोड़ा जहा ज़्यादा जरूरत होती हाँ जो तो
1: हाँ
0: ता ये सारिया ध्यान हड़िया साथियों रखने की जरूरत है कने आशा करके कि रखे भी तो हाँ ना जी।
1: जी तो
0: तो
1: हुण चलदे हन जी मनोरंजन वाले बहाने
0: जी जी गल्ला बात
1: कने
0: है छोटा जिहा विराम देना हाँ कने सुनना है लोक गीत।
1: जी।

0: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच आहां दा प्रयास रहंदा कि रोज हर दिन नोईयां ते नोईयां जानकारियां आहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह आहां दे कृषि विज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारियां होन या फिर आहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने कीती गई गलबात हो। उसी कड़ी विच अज मिंजो मौका मिला जुड़ा करदे हन मेरे कन्ने इक उन्नत किसान करदे हन इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी
0: जी। तुहां दा नां जी?
1: बुद्धी सिंह।
0: कन्ने ग्राएं दा नां?
1: एक पनियारखड़।
0: पनियारखड़ जमानाबाद। कन्ने ब्लॉक तुहां दा?
1: कांगड़ा
0: जी। बुद्धी सिंह जी ता तुहां खेतीबाड़ी करदे हन?
1: हां जी हां जी
0: जी। किन्नी की जमीन है तुहां वाल?
1: सारी जमीन है, दो कमार।
0: अच्छा, यानी कि कनाल कितनी हुई है ता?
1: 20 मणे कनाल हुंदी।
0: तक ए सारी खेती करने काबिल है?
1: खेती करने काबिल है सारे।
0: अच्छा, क्या क्या बांधे कमांदे?
1: बांधे धान, बांधे गाय, घाओ बांधे।
0: हां जी हां। की सब्जी वगैरह?
1: सब्जी लगांदा मैं। अच्छा। सब्जियां लगांदा
0: जियां इबक दी फसल ताना दी?
1: फसल खड़ी है सारे।
0: अच्छा,
1: वधिया फसल।
0: कौन बी लगांदे ताना दा?
1: ए गुलाबो 834।
0: अच्छा अच्छा।
1: एक दो दाने होर हुंदे ना?
0: हां जी। देखा वे एक दो किस्म अगर हां लगा बिलकुल बोलते ने बाकी गल भी है की दिखा आए दिन बीमारियां वाधा कर दी
1: दिन पर दिन।
0: अगर एक ही घर दिखा अगर पांच ते छे मेंबर भी आंदे जिन्हां विच मैं नहीं समझदा की कुछ कोई बीमारी नहीं होंगी है।
1: 90% बॉय निर्भर है दवाई पर।
0: हाँ जी।
1: 10% कोई होगा जो खरा होगा।
0: हाँ हाँ। तो
1: 74वां साल लगे मुझे।
0: अच्छा। मैं देखा करता कि उम्र दे इतने तकाजे विच भी जड़ा सा तो हाँ देखा बिल्कुल जिसे बोलते ना हट्टे कट्टे ना करा इतनी जमीन जड़ी से तो हाँ बाई हो ना।
1: बाई बाई।
0: अच्छा, तो इससे पहले जी तो हाँ नौकरी वगैरह करते है?
1: नौकरी भी करनी, जिम्मेदारी थमी है मैं सारी।
0: अच्छा।
1: 8-9 पाली हड़ी में।
0: अच्छा, डंगरे दे?
1: हाँ, दो जने।
0: तो नौकरी कुछ विभाग ची थी?
1: मैं वन विभाग।
0: किन्ना अरसो हुई है रिटायर आयो?
1: मैं 2014 चाहे रिटायर।
0: अच्छा, 74 साल तो हाँ दी उम्र हुई है ना?
1: लगी है 74।
0: यानी कि जिस दौर में तो हाँ जी दिखा नौकरी की तो 3 दिन था जितनी सड़का वगैरह भी नहीं
1: बनी। नहीं सड़क पैदल जाना, पैदल आना।
0: अच्छा, कितनी दूर जानते हैं पैदल है?
1: मैं 18 किलोमीटर जाना, 18 आना, 36 किलोमीटर तय करता हूँ। नंदरूड़ राजल सुने ना?
0: हाँ, राजल नंदरूड़ बोट क्वालू है।
1: बोट क्वालू में फिर ये तरसू।
0: हाँ जी।
1: स्कोटे दिख रही थी।
0: हाँ जी। अच्छा,
1: जिथे डिमांड पानी जिथे लिया।
0: 18 किलोमीटर जाना, 18 ही होना,
1: 36 किलोमीटर तय पैदल आना।
0: नौकरी करते है वन विभाग च, दिखा भी जिया तुहां दस्सिया की बने बने हंडना, क्योंकि नौकरी बने दी है
1: ना,
0: तिना दिना भी जेड़ा सा अग वगैरा लगदी
1: ही बना, राती राती अग बुझाना जाना।
0: अच्छा, तदू भी लगदी है।

0: अग बजाने वास्ते गब्बे छेद पाना अंडे कंडे कर देने
1: छेका करना
0: छेके कर दे।
1: अच्छा अच्छा जी
0: नसरी बूटे लगाने चील लानी खैर लाना।
1: हाँ जी ते बी वगैरह की कर दे इकट्ठा
0: बी खैर दा खैर हुंदे ते ते फलियां होनी है।
1: हां
0: ते सै खैर
1: आपको ही करना है इकट्ठा।
0: अच्छा मैं तो मेले बिंदे है।
1: हां जी हां जी। अच्छा यानी कि तुहां जे पूरा अनुभव है नर्सरी पर भी रही हो कियां पौधा तैयार करना है
0: सब कुछ।
1: पशु क्या क्या पाले तुहां घर?
0: पशु जनाब एक गाय है।
1: हाँ जी।
0: गाय ही दो त्रै ही
1: दो दिंदी इस वेले सोने वाली है ना। अच्छा हाँ देखा भाई हाँ ठहरे किसान कना अगर हाँ वाल एक अपनी एक घर एक अद्धी एक गाय तो होना जरूरी है ना।
0: जरूरी है
1: क्योंकि दूध अगर घरे का चाहिए भी अगर पूरा हो जाता ना दिखा ही की कर अगर दिने दी चार चार पांच पांच बारी चाह भी बना कर दी था इतना प्योर दूध कुतु मिलना ना
0: नहीं मिलना
1: करना अपने करे दा दूध दही या छा बनाई लिया खोआ बनाई लिया पनीर बनाई लिया दही खाई लिया ना। कई बारी की कोई खेती दे ऐसे कैंप लग दे कोई ट्रेनिंग चल दी तो हम भी कुछ सिखलाई वगैरह ले जी रिटायर होने के बाद यानी कि जड़ी तो खेती कर दे आए अपने तजर्बे करने जड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी है ना।
0: पहले देसी धान लांदे हां तरह तरह दे धान होई हो तरह तरह दे बी होई हो
1: खेती भी जड़ी बिल्कुल बोलते ने आधुनिक हुई दिखा जिया इतने सारे जिया कोई दवाइया आई पहला जिया धान निदाई करते हे
0: बटाड़ करते बटाड़ करते निदाइया करते बड़ा कुछ करते एक एक पट्टी हैं जो छे छे सत सत दिन लगी जाते घाय बीन दे।
1: हां जी हां
0: फिर पारनी देनी है पारनी रखी हुई
1: हां जी
0: बलद पारनी देंदे
1: हां जी
0: हूं तो ट्रैक्टर रखे ट्रैक्टर नु बाद बस
1: फिर
0: सब्सिडी मिली
1: किन्नी मिली
0: मिली
1: बड़ा एक ये है थोड़ा बहुत अनुदान भी अगर मिली जा किसान जो है पता होना चाहिए
0: गोभी लांदे
1: हां जी
0: 250-300 बूटा लाना हो।
1: अच्छा
0: गुड गुडाई करनी कन्ना पाल सब लानी बेची भी लंदे है।
1: अच्छा हां तो देखा भाई तोहां जो ता जिया कांगड़ा बाजार नेड़े लगदा होना ना कने हरी भरी सब्जी ओहे ते घर द्वारी बिकी जंदी
0: घर द्वार ले जंदे हां जी ते घर ले जंदे।
1: अच्छा अच्छा
0: हां जी हां जी
1: जी तोहां दा जेड़ा ए इलाका है तो सिंचाई की कर दे खेत
0: ए कुल्ला ना सर ए मोटोरी दे कुल आउंदी ना
1: पक्कियां ना कुल्ला ना
0: पक्कियां कुल्ला ना पहले आउंदी ही कच्चियां।
1: अच्छा
0: पहले नहीं बड़ा हुन तक दिन रात क्या फर्क है आ मोटोर होना ना।
1: हां जी
0: कण पानी इत पुजी जांदा।
1: अच्छा
0: एकदम हुन टब टब नहीं दे
1: हां जी
0: हुन कुल्ला बणी
1: है। हां जी हां कण देखा पानी दा खेती ताईं बड़ा जरूरी हुंदा है अगर पानी है ता हां कुछ भी फसल उगाई सकदे ने ना जी कुल्ला दे कोण से दिख तोण कोण करदा कुल्ला दी
0: हां अब्दुल्लापुर से लग गए।
1: अच्छा
0: जमाना वाले लग जमाना वाले साड़ा कोली एक
1: हां जी
0: फिर जल कोई बड़ा काम पे जांदा है
1: हां जी
0: ग्रां दे जांदे काम करना।
1: अच्छा
0: किट्ठे होके सारे जाना
1: यानी कि कुल मते सारे ग्रां च लंगी गए हुंदी है ना।
0: हां ये जमाना बाद ही सिर्फ इते
1: दे। अच्छा अच्छा जी जल 50 ते आई है।
0: हां 50
1: लग लग कुल ना ना
0: हां ओ कुल ते मटोरिया पुल नहीं है।
1: हां जी
0: तेरे थल्ले ते कुल साड़ी चले डंगा ते तोए लगदा।
1: अच्छा
0: सब कुल आ जी। हां जी
1: अच्छा
0: फिर है रात बरात लाना पोंदी। हां जी पट्टी सेड ना पोंदे राती जाना पोंदा।
1: हां जी
0: कोई एमरजेंसी हो जाए तो उन्हीं दिन पानी नहीं मिलता।
1: हां जी
0: तो एमरजेंसी च हां जी पानी राती मिलता फिर।
1: अच्छा अच्छा
0: ये लास्ट ग्रां साड़ा म्याळू कने पनैकड़
1: म्याळू
0: साड़े पनैकड़ी थले म्याळू है।
1: हां जी
0: हां राती लांदे।
1: अच्छा
0: कई दिन जल भी खुला पानी होना है।
1: हां जी
0: ता नहीं अच्छा अपना अपना सेड़ा है।
1: हां कहां देखा चलो हलवाइयां बोंदियां ना फसला बिजने डंडल तो पानी दी बड़ी मार मार
0: बड़ो मार में समझो मिनट सेकंडा पानी आंदा कोई टाइम खाता टाइम टाइम दी गल हुंदी
1: कने कई वारी इयां भी हुंदा कि कई ते घर सुत्ते रह जांदे कने कई भी आ गए पटियां
0: सेड़ी जांदे बस ऐसा हो।
1: बोधी सिंह जी इस ते बाद गल करदे ने कि जेड़ी तुहां इत्थों खेतीबाड़ी करदे आ ना तुहां दा जेड़ा इलाका है इत्थों कोई फसला जो उजाड़ वगैरह तो नहीं है कुछ
0: उजाड़ बंदर सूर
1: हाँ जी
0: गूंद गाई।
1: अच्छा
0: ये बड़ी है गूंद गाई बड़ी मत
1: अच्छा
0: ये जंगली तो नहीं पार वारे टपी हुई है ये पेठी सारे इससे सूर रहते इससे परला पर है मांझी दरिया बोंदा।
1: हाँ जी
0: इस पास तो बड़े बड़े सूर बहुत
1: जी तो हाँ इस अपनी जमीन ने जी तार बंदी नहीं की थी कोई बाड़ बंदी वगैरह कुछ
0: और जनाब कर दे तन लोग किट्ठे होंगे तन।
1: हाँ
0: कोई बोलता कोई चुआनी वाला कोई ठानी वाला।
1: हाँ थोड़ी ये बड़ी बड़ी जड़ी समस्या दिखा जमीन

0: ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਰ ਪਟੀਆਂ ਕੁਛ ਕੀਆਂ ਨੇ ਛੇ ਕੁਛ ਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
1: ਸਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
0: ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ
1: ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ
0: ਹਾਂ
1: ਆਪਰ ਛੋਟੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆਹ ਕਹੀਆਂ ਦੀਏ
0: ਤਾਂ ਹਾਂਜੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ
1: ਕਿ
0: ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਖਿਲੀਆਂ ਛੜੀਆਂ
1: ਆਹ ਖਿਲੀ ਬੜ ਬੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ
0: ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂਜੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਦੇਖਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਨਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਕਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਹਿ ਵੀ ਕਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀ ਜੋ ਕਰੀ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਣ
1: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਹਿ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਕਹਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ
0: ਹਾਂਜੀ
1: अपनी
0: जमीन खाली मत
1: छड़ा फाके मर गए
0: बिलकुल बिलकुल महंगाई अगर दुए अगर हां जंगली जानवर डरी जाएंगे घर भी आई रहना कुल मिलाएगी ये हां बोली सकते हैं कि मेहनत करा कने मेहनत फल जड़ा हमेशा जड़ा मिठा होता है जी बुद्ध सिंह जी तुहां अपने अनुभव खेतीबाड़ी दे अहां कने सांझा कीते अपना कीमती समय तुहां अहां जो दिता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी भाऊ तां बड़ी अच्छी गलबात जिहड़ा सा तुसां सांझो ताईं सारिआं ताईं लेके आए हो कहने आशा करदे कि सारे थोड़ी देई इस गल्ला सुनी कि थोड़ी सोच आई होनी गाएं हाँ। कि सांझो भी जिहड़ा कम कार अहां करने न तां कियां कियां सारिआं चीज़ां जो अहां लेके चलना है ना जी सोगी
3: जी
2: ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੋਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਂਝਲ ਅੱਜ ਸਥਾਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲੇ ਭਾਵ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਆਲੂ ਆਲੂ 12 ਅਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ 28 ਅਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ 24 ਅਤੇ 28 लहसुन 120 ते 130 रुपए प्रति किलो अदरक 200 ते 210 शिमला मिर्च 40 ते 45 अरबी 28 ते 30 खीरा 22 ते 30 रुपए प्रति किलो मटर 100 ते 120 फुल गोभी 50 ते 55 बंद गोभी 15 ते 17 बैंगन 18 ते 20 कद्दू भी आई है भाई दिखी लिया कहना बड़ा भारी सस्ता 15 ते 20 रुपए प्रति किलो मूली 25 ते 30 टिंडा 35 ते 36 पालक 30 ते 35 हरी मिर्च 25 ते 30 रुपए प्रति किलो धनिया 100 ते 120 तोरी 18 ते 20 रुपए भिंडी 20 ते 25 घिया 16 ते 20 कटहल 40 ते 50 रुपए प्रति किलो करेला 18 ते 20 फ्रासबीन 70 ते 72 गाजर 25 ते 30 मशरूम 180 ते 190 रुपए प्रति किलो कहना गल करिए हाँ फलां दी तां सेब 130 ते 150 रुपए प्रति किलो केला 50 ते 60 प्रति दर्जन अनार 140 ते 150 अनानास 40 ते 50 अमरूद 80 ते 90 रुपए मौसमी 80 ते 90 रुपए प्रति किलो पपीता 40 ते 50 खरबूजा 25 ते 35 कने तरबूज 15 ते 20 रुपए प्रति किलो पलम दी गल करिए तां 60 ते 90 रुपए प्रति किलो लीची 80 ते 100 अंब भाई 80 ते 100 कने आम तोता जेड़ा होंदा सै बड़ा भारी सस्ता बहू है ना
3: हाँ जी
2: 40 ते 50 रुपए प्रति किलो अंब दशहरी है सभी जेड़ा सै 40 ते 50 नींबू 70 ते 80 कने कीवी जेड़ा सै 40 ते 50 दा एक कने इस दे सोगी हुण अगली जानकारी है हंजल मौसम संबंधी तां भाई दसा ना?
0: जी हाँ जी दिखा भी मौसम च इ'यां ना भाई जी कि दिखा पिछले 3-4 दिन जेड़ा सा राती खूब बरखा हुई है ना
2: जी जी
0: कने अहां दे किसान साथियां जे जेड़ा सा फायदा ए रिया कि दिने जेड़ा सा तिने निम्बर रिया कने संजे जेड़ा सा बरखा जेड़ी सा हुंदी रही राती है ना
2: बिल्कुल कने विशेषज्ञां दे अनुसार पाऊ अगले 2-3 दिन भी जेड़ा सा एदा ही मौसम दिखणे मिलणा यानी कि बरखा भी दिखणे मिली सकदी धुप कने बदल दा मिला जुला रूप है ना जी गल करिए अहां तापमान दी तां अज कांगड़ा दा अधिकतम जेड़ा सा 29 डिग्री सैलसीयस न्यूनतम 23 डिग्री सैलसीयस मंडी अधिकतम 26 डिग्री सैलसीयस न्यूनतम 22 डिग्री सैलसीयस चंबा 23 डिग्री सैलसीयस अधिकतम कने न्यूनतम 19 डिग्री सैलसीयस कने उन्हां दी गल करिए तां 31 डिग्री सैलसीयस अधिकतम कने न्यूनतम 24 डिग्री सैलसीयस अज दा तापमान रहा
0: जी तो कुल मिला के ये बोल सकते कि मिला जुला मौसम जरा सा बने रहना है ना
2: जी जी
0: कने अपने जड़े भी काम काज है ना खेती दे हुई है या कोई होर भी है ना तो जिन की मौसम जो दिखी गई जरा सा करने ना ना
2: बिल्कुल कने इस दे सोगी सोगी अपने किसान साथियों एक और याद दिलाना चाहेंगे

किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्या कार्यक्रम का समय इतों संपन्न होने जो है। तकनीकी सहयोग आयोजता विकास पठानिया ने कन्या प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम के जितेंद्र पाल सिंह उन्हें दुनिया दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, इस बार दिनांक 5 जुलाई 2026 रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किए जाने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय रहेगा, मॉनसून में बच्चों की सेहत को का कैसे रखें ध्यान। और इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर पुनीत आनंद, बाल रोग विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, रविवार दिनांक 5 जुलाई 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए फोन नंबर रहेगा 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुने 01892244391। दिन रविवार सुनना न भूले। 5 जुलाई 2026 को सुबह 9 से 10 बजे तक एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:45 पर। कीजिए इंतजार।

0: वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप पहुंची ओमान। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे किसानों के लिए खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश में जल्द लाई जाएगी नई औद्योगिक नीति, पर्यावरण अनुकूल व अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार, सीबीएसई स्कूलों में मेरिट आधार पर होगी अध्यापकों की नियुक्ति। नगर निगम सोलन में महापौर पद पर भाजपा की जीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सुक्खू सरकार की साजिशें हुई नाकाम। और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने नाहन में किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने और राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप ओमान पहुंची है। वहां के लोगों ने हिमाचल के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता व स्वाद की सराहना की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खुलेगी। उन्होंने बागवानों से गुणवत्ता, ग्रेडिंग और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि हिमाचल वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले फलों के आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, जिसमें पर्यावरण अनुकूल और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज नाहन में आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस नीति में स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर जोर रहेगा।
1: हमने अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं, जिसमें कि हम ज्यादा प्रमोट, हम जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूनिट्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। जो वाटर कंज्यूमिंग यूनिट्स है, जैसे एथेनॉल का बहुत चलन है, उसको हम डिस्करेज करेंगे। पावर कंज्यूमिंग यूनिट्स है, सरिये वाले यूनिट्स है, उसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे। ऐसी यूनिट्स को हम प्राथमिकता देंगे जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। और हमारी कोशिश है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, वहां पर हमारी इंडस्ट्री जाए, ताकि हमारे जो फ्रूट बेस्ड है, फूड बेस्ड है, हमारे कोल्ड स्टोरेज चेन्स है, इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी जल्द आने वाली है।
0: उद्योग मंत्री ने बताया कि आरडीएस योजना के तहत सिरमौर जिले में 157 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि बिजली सेवाओं को मजबूत किया जा सके। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति नीति भी मेरिट के आधार पर लाई जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में सूची लगभग 90% तैयार हो चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में सीबीएसई अध्यापकों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने पर सहमति बनी है और अब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय का कार्य शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा।
2: मेरिट के आधार पर जो हमने एक पॉलिसी लाई थी और उसके आधार पर आपकी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो। उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल्स के भी लगभग कोई 150 के आसपास हमने जो पद भरने हैं, उसकी तो सूची भी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है और उसके उपरांत अन्य कैटेगरीज के जिन्होंने रिटर्न दिया था, उसके बाद स्क्रीनिंग हुई, उसके आधार पर ये सारी बातें हो। तो जो कल की बैठक थी उसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी उसको हम कैबिनेट भी ले जाएंगे। और जहाँ तक हमारे शिक्षा विभाग की बात आती है, हमारा स्टैंड इसको लेकर क्लियर है कि मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियां शीघ्र हो।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आज सोलन में आयोजित जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को भी कहा। सुरेश कश्यप ने सभी खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
3: सोलन जिला की दिशा की बैठक थी और इसमें हमने भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं इसका रिव्यू किया और की समीक्षा करके हमने निर्देश भी दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से जो इन योजनाओं को पूरा किया जाए। हमने पीएमजीएसवाई की जो हमारे सड़कें जिनका निर्माण का काम चल रहा है और हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ लगभग 52% रोड्स ऐसे हैं जो पीएमजीएसवाई के तहत बने हैं।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नगर निगम सोलन के महापौर और उप महापौर के चुनाव आज संपन्न हुए। इसमें भाजपा की 4 बार की पार्षद सुषमा शर्मा महापौर जबकि निर्दलीय चुनाव लड़े गौरव राजपूत उप महापौर निर्वाचित किए गए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने सभी 17 वार्डों में एक समान विकास करवाने की प्राथमिकता दोहराई। उन्होंने लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरोसा भी दिलाया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निगम सोलन में भाजपा की महापौर सुषमा शर्मा और गौरव राजपूत को उप महापौर निर्वाचित होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये जीत लोकतंत्र, जनविश्वास और सुशासन की राजनीति की जीत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये परिणाम स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से निराश है और जनप्रतिनिधियों के विवेक के सामने सुक्खू सरकार की साजिशें नाकाम साबित हुई हैं। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल में पहाड़ी से पत्थर गिरने की दर्दनाक घटना में एचआरटीसी के परिचालक ज्ञान सिंह की मौत हो गई। ज्ञान सिंह मंडी जिला के जोगिंद्रनगर क्षेत्र के लड़बड़ोड़ गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार बस अपने निर्धारित रूट पर थी और आज सुबह म्याड़ नाला के पास बस रुकने पर ज्ञान सिंह ब्रश करने के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनके सिर पर आ गिरा जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि प्रदेश में 2 दिनों के भीतर पत्थर गिरने से मौत की ये दूसरी घटना है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने आज नाहन में महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। समिति की राज्य अध्यक्ष संतोष कपूर ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रदेश सरकार से महंगाई पर नियंत्रण करने और रोजगार के अवसर बढ़ाकर आम जनता को राहत देने की मांग की है। संतोष कपूर ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
4: इस विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान के अंदर जो है हमारा देश की जो सरकार है उसके प्रति आक्रोश है। देश और प्रदेश की सरकार को भी साथ में कि ये जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जो हालात आज बने हुए हैं उन हालातों को ऊपर अभी भी कंट्रोल कीजिए, अन्यथा जो है देश के अंदर आक्रोश और महिलाओं का रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में हम ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर रसोई गैस की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं की गई तो ये आक्रोश जो बढ़े।
0: प्रदेश कांग्रेस ने आज से राज्य में संगठन विस्तार अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि अभी

0: अभियान के दौरान अगले एक महीने में 8 से 10 हजार लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के पहले दिन आज शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रामपुर से 2 बार भाजपा प्रत्याशी रहे ब्रिजलाल ने 250 से अधिक सदस्यों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
1: विस्तार कार्यक्रम इसकी आज हमने शुरुआत की है। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य जी हमारे साथ है और रामपुर से हमने इसका शुरुआत किया है और आज ब्रिजलाल जी रामपुर से संबंध रखते हैं और ये अपने कम से कम 250 से 300 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ है और सभी लोगों ने यहाँ पार्टी को ज्वाइन किया। इसी प्रकार के प्रोग्राम जो है हम पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे और पूरे प्रदेश में लगभग हम 8 से 10 हजार लोगों को जोड़ेंगे।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने का दावा पूरी तरह झूठा और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जन विरोधी नीतियों और विफलताओं से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का राजनीतिक नाटक कर रही है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप पहुंची ओमान। मुख्यमंत्री ने कहा इससे किसानों के लिए खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा प्रदेश में जल्द लाई जाएगी नई औद्योगिक नीति। पर्यावरण अनुकूल व अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में मेरिट आधार पर होगी अध्यापकों की नियुक्ति। नगर निगम सोलन में महापौर पद पर भाजपा की जीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा सुक्खू सरकार की साजिशें हुई नाकाम। और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने नाहन में किया प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, प्रस्तुत है रोजगार सूचना। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी जिला मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पदों को भरने हेतु इच्छुक स्थानीय महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सरकार द्वारा क्रमशः 10,500 और सहायिका को 5,800 यानी कि 5,800 रुपये व समय समय पर निर्धारित दर पर प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। पंचायत और वार्ड का नाम है टिक्कर। यहाँ पर जो आंगनबाड़ी का केंद्र है वह टिक्कर। कार्यकर्ता का पद भरा जाना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/7/2026 है और इंटरव्यू है 21/7 को। इसी तरह से आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो टिक्कर ही है, यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका का भी पद भरा जाना है। इसके लिए जो पर्यवेक्षक वृत्त है वो नंगवाई है, और इसके लिए भी जो साक्षात्कार की तिथि है 21 तारीख है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 तारीख है। इसी तरह से राहला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है रूपा, यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। इसी तरह से शिल मशोरा आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। चेटीगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र में त्रैल के अंतर्गत यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। पंचायत जलाकाशना आंगनबाड़ी केंद्र है खेणी, यहाँ पर भी आंगनबाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। जो पर्यवेक्षक वृत्त है वो नाव है, यहाँ पर सभी

0: जगह के लिए आपको जो आवेदन करना है उसके लिए अंतिम जो तिथि है वो है 15 जुलाई, और जो इंटरव्यू है यानी कि साक्षात्कार है वो 21 जुलाई को होगा SDM कार्यालय बाला चौकी में। तो इच्छुक उम्मीदवार अब आवेदन सारे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित कार्यालय बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी में जमा करवाएं तथा साक्षात्कार हेतु व्यक्तिगत रूप से आप वांछित मूल दस्तावेजों सहित उपमंडलाधिकारी बाली चौकी जिला मंडी के कार्यालय में दिनांक 21/7/2026 को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो जाएं। इसके लिए जो और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी के जो दूरभाष नंबर है 01905225544 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी रोजगार सूचना, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, रात के 8 बज चुके हैं और अगर आपको लगता है कि दिन की कहानी खत्म होने जा रही है तो जरा ठहरिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी महफिल जहां हर सुर का अपना रंग है और हर रंग का है अपना रस, क्योंकि कार्यक्रम है सबरस। स्वागत है सबका कार्यक्रम सबरस में, जिसका नाम ही काफी है। यहाँ कोई एक मिजाज नहीं चलता। कभी गजल की नजाकत दिल को छू जाती है, कभी कव्वाली का जोश रूह को झुमा देता है, कभी नॉन फिल्मी गीत अल्फाज की गहराई में ले जाते हैं तो कभी पंजाबी गीत अपनी मस्ती और ऊर्जा से पूरे माहौल को रंगीन बना देते हैं। कार्यक्रम सबरस की शुरुआत कर रहे हैं हम इस गजल के साथ। इस गजल को गाया है राहत फतेह अली खान ने।

श्रोताओं, जब अल्फाज शायरी से मिलते हैं तो दिल सुकून महसूस करता है, और वैसा ही कुछ सुकून आपने भी महसूस किया होगा इस गज़ल में। अब ज़रा महफिल का रंग बदलते हैं और चलते हैं उस दुनिया में जहां तालियां भी सुर बन जाती हैं और आवाज़ें एक साथ दिल में पहुंचती हैं। पेश है ये दमदार कव्वाली।

गीत संगीत के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराता ये कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हर गीत फिल्म पर या पर्दे पर नहीं आता, कुछ धुनें अपनी पहचान खुद बनाती हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गैर फिल्मी गीत।

जी, हमारे श्रोता हमें देखें ना देखें, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे श्रोता हमें सुन जरूर रहे हैं और ये प्यार हमारा यूं ही बरकरार रहेगा। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जोश की बात की जाए, जहां ढोल की थाप हो वहां मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। तो अब बारी है कार्यक्रम में पंजाबी गीत की। लीजिए पंजाबी गीत सुनिए बी पराग की आवाज़ में।

बी पराग का गाए ये पंजाबी गीत अभी आपने सुना। मिले जुले गीतों का ये कार्यक्रम है सबरस, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से। श्रोताओं, अब एक जरूरी सूचना। हमें खेद है कि कार्यक्रम आप और हम की रिकॉर्डिंग फोन लाइन खराब होने की वजह से ये रिकॉर्डिंग आज नहीं हो पाई, और श्रोता जो हैं वो निराश बिल्कुल ना हो, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम मंगलवार सुबह 8:30 से 9 बजे तक लाइव फोन इन रहेगा, जिसमें आप अपने सुझाव और शिकायतें हमें बता सकते हैं। दिन रहेगा मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई 2026। स्टूडियोज के फोन नंबर 01892-224391 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने विचार सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। सबरस कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला पर। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये एहसासों का सफ़र है। तो आइए अब रंगते हैं इस सूफी रंग में।

श्रोताओं, एक ही प्लेलिस्ट में अगर हर रंग का संगीत मिल जाए तो सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है। और आज का ये सफ़र उम्मीद करते हैं आपके लिए खूबसूरत रहा होगा। चलते चलते ये गीत सुनिए।

श्रोता, ये थी कार्यक्रम सबरस की अंतिम पेशकश। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए संगीत और आकाशवाणी धर्मशाला को अपनी जिंदगी का यूं ही हिस्सा बनाए रखिए। ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर अब लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ @9 आप सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों

0: के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति, दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों

0: के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम एक ऐसे फनकार से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने अपनी अदाकारी से ही नहीं, अपनी आवाज़, अपने अंदाज और अपने रुतबे से भी भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। आज बात होगी उस शख्स की जिसका नाम लेते ही कानों में एक दमदार आवाज गूंज उठती है, जानी। बस इतना सा लफ्ज और सामने उनकी पूरी शख्सियत जिंदा हो जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अभिनेता अभिनेत्री क्रम में फिल्म अभिनेता राजकुमार के बारे में। इनका जन्म हुआ 8 अक्टूबर साल 1926 को और इनका जो असली नाम है वो है कुलभूषण पंडित। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वे मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। कहते हैं उनकी दमदार आवाज़ और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर किसी फिल्म निर्माता ने उन्हें अभिनय करने की सलाह दी और फिर उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया का रुख किया। शुरुआती संघर्ष के बाद मदर इंडिया जैसी फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया गया मदर इंडिया फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि अपनी अलग शैली के लिए उन्हें जाना जाता था। उनकी संवाद अदायगी इतनी प्रभावशाली थी कि आज भी उनके कई डायलॉग लोगों की जुबान पर है। वक्त, हीर रांझा, हमराज, पाकीज़ा, नीलकंठ।

मल, कर्मयोगी, मर्तेदम तक, सौदागर जैसी कई यादगार फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिन्हें आज भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी आत्मविश्वास, शाही अंदाज और वह दमदार आवाज़ जो किसी भी दृश्य को यादगार बना देती थी। उन्हें अभिनय की दुनिया का एक ऐसा कलाकार माना जाता है जिसने कभी किसी की नकल नहीं की बल्कि अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत जो हमने लिया है फिल्म वक्त से।

एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं और अभिनेता अभिनेत्री क्रम में आज बात हो रही है फिल्म अभिनेता राजकुमार के बारे में।

दोस्तों, राजकुमार का फिल्मी सफर लगभग 4 दशकों तक चला। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए और अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। 3 जुलाई साल 1996 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन एक

कलाकार कभी सचमुच विदा नहीं होता, उसकी आवाज, उसका किरदार, उसका काम हमेशा जिंदा रहता है और राजकुमार इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं, उनके संवाद आज भी दोहराए जाते हैं और उनका अंदाज आज भी बेमिसाल माना जाता है। बात राजकुमार की हो और सौदागर फिल्म का गीत न चले, ये तो हो ही नहीं सकता।

0: कातल क्या था और कातिल कौन था, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो। और रही इतिहास की बात, ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं।
1: ये दमदार आवाज अभिनेता राजकुमार की और इन्हीं पर केंद्रित था हमारा आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार। आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से अभी ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। 9:30 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम रंगे गजल। आदाब नमस्कार श्रोताओ, रात की इस दिलकश फिजा में आपका खैर मकदम है, जहां हर लफ्ज एक कैफियत है, हर सुर में एक एहसास और हर गजल अपने साथ कोई अनकहा फसाना लेकर आती है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त नीलम, और रंगे गजल कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं। ये एक ऐसी महफिल है जहां अल्फाज सिर्फ कहे नहीं जाते, दिल से महसूस किए जाते हैं। महफिल सज चुकी है, बस आपकी तवज्जो का इंतजार है। तो पेश है आज की पहली दिलनशी गजल, गजल सरताज जगजीत सिंह की गई।

जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल को अभी आपने धड़कते हुए सुना। मोहब्बत की दुनिया में कुछ चिराग ऐसे होते हैं जिन्हें आंधियां नहीं बल्कि यादें रोशन करती हैं। वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन दिल में जली हुई कुछ शमाएं हैं जो कभी भी नहीं बुझती। इन्हीं जज्बातों को खूबसूरत अल्फाजों और सुरों में पिरोता है अगला ये गजल जिसने गाया है मेहंदी हसन साहब ने।

अल्फाज अगर सादगी से दिल की बात कह दें तो वही गजल बन जाते हैं। इन्हीं गजलों का कार्यक्रम रंगे गजल इस समय आप सुन रही हैं आकाशवाणी धर्मशाला से। आर आपने इसे ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और साथ ही साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन रहे हैं। जिंदगी की रवानी का एक उसूल है, ये कभी एक जगह ठहरती नहीं। वक्त के साथ हालात बदलते हैं, रिश्तों की तासीर बदलती है और कभी कभी इंसान के जज्बात और ख्यालात भी नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन्हीं बदलते रंगों और जिंदगी की इसी हकीकत को बेहद खूबसूरत अंदाज में अल्फाज का जामा पहनाया है अनूप जलोटा साहब ने।

इश्क की कैफियत भी अजीब होती है साहेब। कभी एक नज़र का इंतज़ार सदियों सा महसूस होता है, तो कभी एक मुलाकात के ख्याल से ही दिल की धड़कनें अपनी रवानी बदल देती हैं। मोहब्बत में दिल और जिगर की ये कश्मकश, यही बेकरारी और यही इंतज़ार गज़ल को इसकी असल रूह बख्शते हैं। महफिले रंगे गज़ल में अब पेश है एक ऐसी ही दिलनशी गज़ल जिसके हर शेर में इश्क की नज़ाकत और इंतज़ार में खुशबू महकती है। मुलाहिज़ा फरमाइए। सुदीप की गाई ये गज़ल इस वक्त आपके रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम रंगी गज़ल आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से।

गजलें कभी वक्त की मोहताज नहीं होती, हर दौर में उनका असर वही रहता है, गहरा, खामोश और दिलनशीन। अब सुनिए चंदन दास को।

श्रोताओ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप इस समय लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम रंगे गजल का। गजल अल्फाज का वो सफर है जहां हर मिसरा किसी एहसास की दस्तक बन जाता है और हर शेर दिल की धड़कनों से हम कलाम होता है। पेशे खिदमत है एक और दिलनिशी गजल तलत अजीज और पिनाज मसानी की आवाजों में।

दोस्तों, इसी गजल के साथ रंगे गजल की आज की खूबसूरत महफिल बस यहीं पर थमती है। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत कि फिर मुलाकात होगी एक नई महफिल, नई गजलों और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आदाब, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंगी गजल, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात के 10 बजने को है, कुछ ही देर में प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और आकाशवाणी दिल्ली से ही सभा के अंत में 11 बजे समाचार आप सुनेंगे, 11 बजे हिंदी में, 11:05 पर अंग्रेजी में।
1: आकाशवाणी है प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक

0: We bring you a Chakyar Kuta by Sri Margi Mathu and Party.
1: Sri Margi Mathu Koodiyattam ke agrani kalakaron mein se ek hai. Koodiyattam Keral ki prachin Sanskrit rangmanch parampara hai jise UNESCO ne manavta ki maukhik evam amurt सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे हैं। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पीके नारायणन नंबियार और एम माधवनुन्नी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूडियाट्टम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूरिकुलम स्थित नेपथ्य कूडियाट्टम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
0: श्री मार्गी मथु इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कूडियाट्टम, द एंशिएंट सांस्कृत थिएटर ट्रेडिशन ऑफ केरला, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। Born on 19 May 1966, he is the son and disciple of Padma Shri Moorikulam Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Moorikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Moorikulam Nepathya Koodiyattam Center.
1: Margi Madhu Dwara Prastut Chakyar Kutka Katha Sandarb Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar Melpatur Narayana Bhattadri. Katha Sandarb Divya Pashupatastra Ki Prapti Ke Liye पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
0: We shall now present the story background of the Chakyar Kuta performed by Sri Margi Mathu. Kiratam, author Melpatur Narayana Bhattadiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a Kirata. At that time, the demon Mukasura, who has assumed the form of a wild boar, approaches to kill Arjuna. Both Arjuna and the hunter shoot the boar and kill it.

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: डियर लिसनर्स, यू हैव जस्ट हर्ड द चाक्यार कूथ प्रेजेंटेड बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी त्रिशूर।
0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम संगीत लेकर आए हैं। श्री अमल एंटनी एक पार्श्व गायक, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Shri Amal Antony. Shri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani. A gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions, Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the Peace Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Aaj raat, Shri Amal Antony char sugam geet prastut kar rahe hai. In charum geetom ke bol, Malayalam ke prasidh film geetkar एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: Tonight, श्री अमल एंटनी presents four light vocal songs. The lyrics of all songs have been written by श्री रफीक अहमद, the renowned Malayalam film lyricist and poet. The music has been composed by Shri T.S. Radhakrishnan, a noted music director who is especially acclaimed in the field of devotional music.
0: Shri Krishna aur Radha ka sambandh matr laukik prem nahi hai, balki wo jeevatma aur paramatma ke divya milan ka prateek hai. Aaiye, sabse pehle Radha Madhav ke prem ka sundar chitran karne wala ek geet.
1: The relationship between Shri Krishna and Radha is not merely a worldly romance. It symbolizes the divine union between the individual soul and the supreme being. Let us begin by listening to a song that beautifully portrays the love of Radha and Madhava.

0: मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yearning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू वेर लिसनिंग टू अ प्रेजेंटेशन ऑफ मलयालम लाइट सॉन्ग्स बाय श्री अमल एंटनी। The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K. X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C. N. K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Bhavtarini. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लैंड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
3: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड, भारत जापान